فمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن

क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तखलीक को जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं, और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है।

مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض

और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाई तरफ से आते थे। वो कहेंगे, नहीं बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे।

हां अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और हमको नूह ने पुकारा सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया। और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे।

पंजाब सिंध जे एतजाज ए एतराज के रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर केनाल में पानी छोड़ करे छो रसूल हेडवर्क्स तां जहलम दरिया जो पानी आजमाइशी बुनियादन ते न्यू जलाल केनाल में छोड़ कयो वयो। रसूल हेडवर्क्स तां लगभग 1,350 क्यूसिक पानी जो छोड़ इरसा तर्जमान जो चवण आहे त पंजाब पंहिंजे हिस्से जो पाणी न्यू जलालपुर केनाल में छॾियो। असां खे को एतराज़ नाहे। इरसा 2014 में ई न्यू जलालपुर केनाल लाइ NOC जारी करे चुकी हुई। 2014 में जलालपुर केनाल जे सिंध मुखालफ़त कई हुई, ॿियनि सूबनि हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी केनाल ख़िलाफ़ CCI में बि आवाज़ उथारियो हो। सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त गॾियल मुफ़ादनि वारे काउंसिल अञा ताईं न्यू जलाल केनाल जे मंज़ूरी न ॾिनी आहे। CCI जी मंज़ूरीअ खां सवाइ केनाल खोलणु मुनासिब नाहे। सिंध ऐं बलूचिस्तान विच में पाणी विर्स वारा मामला गॾियल राब्ते सहकार ऐं मुआहिदनि मुताबिक़ हल करण ते इतफ़ाक़। सिंध जे आपाशी वारे वज़ीर जाम खान शोरो ऐं बलूचिस्तान जे आपाशी वारे वज़ीर सादिक़ उमराणीअ जो ऑनलाइन इजलास। जाम खान शोरो चयो आहे त आबी मुआहिदे तहत बलूचिस्तान खे हिसे जो पाणी मुकमिल ऐं वक़्त सर ॾिनो वञे। ॿिन्ही सूबनि जे आबादगारनि जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ यकीनी बणाइण ज़रूरी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोलियम क़ीमतनि में इज़ाफ़ो करे छॾियो। पेट्रोल 5.44 रुपया ऐं डीज़ल 31.05 रुपया फ़ी लीटर महांगो। क़ीमतनि में इज़ाफ़े बाद पेट्रोल 3.15 रुपया ऐं डीज़ल 354.35 रुपया फ़ी लीटर थी वियो। पेट्रोलियम डीज़ल अघनि में वाधि जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाबा है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
0: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।

अमेरिका जा ईरान ते 17 दिन भी मिसाइल हमला पुलन है बिजली घरन के निशानो बनायो अमेरिकी हमलन के नतीजे में 8 शहरी शहीद हुए जख्मी ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास डाइंदर वींदर रस्तन रेलवे ट्रैक से पुलन के तबाह करे छो बो शहर लो रस्ता आए बेन शहरन में बिजली घरन पुलन नेवल ए फौजी अडन के निशानो बनाए वो गुलिस्तान सूबे में ईरान रूस के रेल जरिए गंढींदड़ पुल के बे अमेरिका तबाह करे छो अमेरिकी सेनेट का मौजूद ईरान के दिफाई

0: अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान जमान बहरीन कुवैत शाम कतर और इराक में जवाबी हमला अमेरिकी फौजी अड्डन दिफाई निज़ाम के निशानो बनाने की दावा पासदारन इनकलाब मूजिब उर्दन में हमले के नतीजे में अमेरिकी वेड़ाक जहाज तबाह थियान ओमान में अमेरिका के जदीद रेडार सिस्टम के तबाह किया वो शाम में भी अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह किया जैसे नतीजे में केतरा ही अमेरिकी फौजी भी मार कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण की तस्दीक कर छी। आप महमूद के बेरी विछवे के टिन हफ्तन के घट सतह ताई पहुंची वही मेरी टाइम्स तंजीम मूजिब खमीस दिहाड़े सिर्फ अठ जहाज आप महमूद का गुजरिया अठ मां सत जहाज ईरानी रस्तो इख्तियार कयो। गडियल कौम के ईरान विचोभर में शहरी हंधन से हमलों की मजम्मत इंटोगेत्रोस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के निशानो बनाने से गंती जो इजहार किया संदस चवण हो तो अड़ा हमला कबूल करण जोगा ना हिन।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राबते जे लाए 0320180003।

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मेरा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307 3592120।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM
1: 94 शिकायत फरमाइश कोशिश कभी तो पूरी कर।

बिजली घरनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद, 20 ज़ख़्मी। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रेक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो। बोश शहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि रस्तनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमेरिका तबाह करे छॾियो। अमेरिकी सेनेट काम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरीन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब मूजिबि अर्दुन में हमले जे नतीजे में अमेरिकी वेढ़ाक जहाज तबाह थिया आहिनि। ओमान में अमेरिका जे जदीद रेडार सिस्टम खे तबाह कयो वियो। शाम में बि अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह कयो आहे, जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई अमेरिकी फ़ौजी बि मारिजी विया आहिनि। कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तसदीक करे छॾी।

अधिनियम ॿाहिरि उमाण बदिरां रचाओ जी सतह घटाए न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लुबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक़ डार चयो त अमेरिका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाओ थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो। आबन हरमुज़ मां जहाज़ 60 ॾींहं ताईं ट्रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टेट नेविगेशन या सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रम्प ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई। सऊदी अरब, कतर, मिस्र ऐं

सपोर्ट करे रहा है गालिन जो इंदर मरलो सब थी सके तो डील में को भी नाकारी नुक्तो ना है। आपने हरमुस जे बहरी ट्रेन हफ्तन जी घट सतह ताई पहुंची वही मेरी टाइम तंजीम मौजूब खमीस दिहाड़े सिर्फ अठ जहाज आपने हरमुस का गुजरिया अठ मां सत जहाज ईरानी रस्तो इख्तियार कयो। गडियल कौमन जे ईरान ए विचोभर में शहरी हंधन ते हमलन जी मज़म्मत एंटोनी गोतरे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के निशानो बनाने ते गलती जो इजहार कयो संदस चवण हो ते अड़ा हमला कबूलन जोगा नाहिन। पेट्रोल जे अघ जो ऐलान हाने रोज थींदो ओगरा कराची लाहौर इस्लामाबाद समेत सजे मुल्क में पेट्रोल एंड डीजल जा अघ रोजाने मुकरर कंदो। वफाकी वजीर अता तारण अली परवेज मलिक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वजीरन चयो त आलमी मंडी तेल जो अघ घट थिए या वधे कीमत फौरी तौर तय थींदी। पेट्रोल मालिकन पारां हुकूमती फैसलो रद्द फैसलो वापस न वठण ते एहतजाज जो चिताव

त थी वियो छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा अघ रोज मुकरर थींदा छा रेलवे जो किरायो रोज तब्दील थींदो पेट्रोल अघनि जे रोज़ानी फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया अवाम परेशान पेट्रोल सां गॾु छा सब्जी गोश्त ऐं फ्रूट्स रोज महांगा ऐं सस्ता थींदा पेट्रोल मालिक तेल महांगो थियण जी लालच में विकिरो रोके बि छॾनि था छा रोज़ ईअं ई थींदो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-04372 आई 0242-460100

ज़ब्त थियल असासन जे जारी करण वारे मुआहिदे खे हतमी शकल डि॒नी वई आहे। आबना हरमुज़ में जहाज़नि जे अचवन जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण ते तफ़ाक़ कयो वियो। ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ़ जे स्पीकर जो बयान। बाकर कालेबाफ़ चयो त आबना हरमुज़ जो इंतज़ाम ईरानी क़यादत ई तय कंदी। ईरान यूरेनियम ॿाहिरि उमाण बदिरां रचाउ जे सतह घटाए। न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक डार चयो त अमेरिका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाउ थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो। आबना हरमुज़ मां जहाज़ 60 ॾींहं ताईं ट्रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रम्प ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई। सऊदी अरब, कतर, मिस्र ऐं गॾियल इमारतूं टेकाड़ीअ खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो सख़्त थी सघे थो। डील में को बि नाकारी नुक़्तो नाहे।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 आई तौकीर अहमद 0306 16 23 793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: चार चांद लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपको बताएंगे बहुत ज्यादा वाली बातें, जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिस्टनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंतकीफ हालत उनके से ही आपकी हालत उम्मीद हम शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे। आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले। तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जी, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है जनाब कि आगे से प्रोग्राम भी कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। ओके जनाब, सो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियां हासिल करती रहिए, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं।
1: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

ओके जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप ही वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जी आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। ताकि भाई अगर आपकी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसको जरा दूर किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती में किस तरह चार चांद लगने वाले हैं। ओके जी, साथ ही साथ बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में आगे और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक या फिर सवाल क्या है। तो अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए, ओके जी, तो आज का जो मेरा आप लोगों से सवाल होगा वो कुछ यूं होने वाला है कि आपने मुझे ये बताना है, फर्ज कर लीजिए अगर आपके फोन की जो मेमोरी है वो फुल हो जाए, यानी कि स्टोरेज पूरा फुल हो जाए और आपके फोन में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने उसमें से कुछ भी डिलीट आप नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो कुछ पुरानी यादें हैं या तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए भी जो ना अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे। ओके जी, तो सवाल कुछ यूं है कि आपने मुझे बताना है कि अगर आपके फोन का स्टोरेज फुल हो जाए, मेमोरी फुल हो जाए और आपके फोन में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ऐसा है कि आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइम आप क्या करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ओके जी, प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाइए, कॉल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, बिल्कुल ही जब आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए।

जी, सो आप हमारे साथ फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी ये लाड़का ना एफ एम 88.8 हमारा पेज है, बिल्कुल ही जब आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिससे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए जी, सो आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में ज्वाइन करते जा रहे हैं और साथ ही साथ ये बात जो है

0: कि अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आप लोग अपने आसपास जितने भी लोग हमारे साथ हैं यानी कि उनको भी ये बताएं कि भाईजान आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, तो अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज कीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब आप सब लोगों के लिए ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों को ये कहा जाए कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ये से गिने चुने प्रोडक्ट बताए जाएं। भाई ऐसी एक बात आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ये तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाने वाले हैं। ओके जी, सो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए तो उसके लिए आप डायल करने वाले हैं 03157990595। बुड़ी 1315 79 9595 ही नंबर है जो डायल करें। पांच करीबी जनरल स्टोर से व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन उन्हें तमाम अवेलेबल कराए सको। हाय मासूमा, ये पोएट्री है, ये लाजमी नहीं कि तुझे आंखों से देखूं, तेरी याद का आना तेरी दीदार से कम भी नहीं। क्या बात है जी। और ये हमारे साथ मौजूद है मीरपुर खास से रुखसार मरी है जी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सदरा, क्या हाल है आपके, आपका शो सुन रहे हैं बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, आपको खुश आमदीद। कहती मुझे ओएसटी सुनाइएगा, आई विल ट्राई। और उसके अलावा है जी हमारे साथ यहाँ पर कौन, अब्दुल गफूर केसर हमारे साथी जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। इमरान अली अब्बासी कहती है अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं बाजी, आ गए आपके साथ ही हम 3 बजे तक, क्या बात है, भाई को खुश आमदीद कहा जाता है। सालार खान हमारे साथ कहते हैं सलाम, क्या हाल है, मैं कोटड़ी से आपका शो सुन रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम शामिल हुआ हूँ, कोई वेलकम करेगा, बिल्कुल जी आपको वेलकम किया जा रहा है। सालार खान आपको खुश आमदीद कहते हैं जी हम इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में। वासु भाई हमारे साथ मौजूद है, वासु भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक ठाक है। और इमरान भाई कहते हैं हमने पहले ही डाउनलोड किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, अच्छी बात है। और नखा अलावा आमिर कहते हैं टॉपिक मासूमा, एक फोन की मेमोरी फुल हो जाएगी तो फिर दूसरे फोन जो है ना वो यूज कर लेंगे। अच्छा चले, सब लोगों के पास तो दूसरे फोन नहीं होते ना, तो इसका हल निकालना चाहिए। और बताइए अगर आपका फोन जो है उसका स्टोरेज पूरा फुल हो जाए तो आपके फोन में सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो, सारा मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इस सूरत हाल पे आप क्या करेंगे। ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और ये हमारे साथ मौजूद है गोठ मोहम्मद तैयब थेबू को, हबीबुल्ला थेबू कहते तवां जो शो वेरी नाइस आहे, सलाम तवां के, वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा तवां के। वरियाम अली जतोई कहते हैं सिदरा हम भी आ गए हैं आपके इस प्यारी सी महफिल में, सिदरा कोई भी अच्छा सा गाना प्ले कीजिएगा फायजा अली का। बिल्कुल जी, फायजा अली का गाना लगाते हैं आपके लिए। और हैप्पी गर्ल हमारी साथ ही अस्सलाम वालेकुम सिजु जानी, वेलकम टू शो, मैं भी आ गई आपकी प्यारी सी महफिल में, आपको खुश आमदीद प्यारी हैप्पी गर्ल। कहती है सिजु जानी शो हमेशा की तरह बेस्ट है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मेरी आप भी हमेशा खुश रहें और ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें। उनके अलावा ये हमारे साथ हैं ओके जी, ओके आपको वेलकम कहा जाता है। और साथ ही साथ आप जरा जो है ना टॉपिक को फॉलो करती रहिए और बताइए कौन कौन से हमारे जो प्यारे लिसनर्स हैं वो व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन के ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप व्हाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो कौन सा प्रोडक्ट लगाया है, अगर आप डी स्किन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो भी कौन से आप लगा चुके हैं, ये भी आप मुझे बताइएगा। सालार खान आपको खुश आमदीद कहा जाता है जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहे। टॉपिक को फॉलो कीजिए और बताइए आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। और यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, प्रोग्राम में साथ देंगे जी पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये आपकी खूबसूरती के राज है।
1: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तक
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती आपको मिल जाएगी, इतना काफी नहीं क्या? तो अगर आप भी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट, तो आप लोगों को हम बताएंगे, वजाहत के साथ बताएंगे कि जब अगर आपका दिल चाहे तो आप लोग जो है बिल्कुल जी इस्तेमाल कर सकते हैं वाइट ईश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और वाइट ईश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको मिल रहे हैं इतने अच्छे इतने मजे के प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करने के बाद कहेंगे आई हाय ये कितने मजे के प्रोडक्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो हैं वो फलां प्रोडक्ट लगाते हैं, क्या पता वो वाइट ईश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हो या ना हो, तो आप लोगों को ये बताते चलूं कि जब आप वाइट ईश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करेंगे तो वाइट ईश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यानी कि ऐसा कि अगर आप नाइट क्रीम लगाने वाले हैं तो आपको नाइट क्रीम मिल रही है, फेयरनेस क्रीम लगाने वाले हैं तो फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्नी ट्यूब लगाने वाले हैं तो एक्नी ट्यूब मिल रहा है, साबुन लगाते हैं तो साबुन है, फेस वॉश लगाते हैं तो फेस वॉश है। इस तरह बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है जो कि भाई अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को मजीद पता चल जाएगा कि वाकई कितने अच्छे और कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक ही हैं। तो अगर आप भी वाइट ईश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइट ईश ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते चलूं, तो वाइट ईश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है।

मिल्क मौजूद है और एलोवेरा मौजूद है, ये सब नेचुरल चीजें हैं और वो चीजें जो कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है, आपकी स्किन फेयर हो जाती है और आपके चेहरे पर जितने प्रॉब्लम है वो सारे दूर हो जाते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को परफेक्ट वाले निखार मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एज ब्यूटी सोप मिल रहा है और व्हाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो भाई बड़े खुश हैं, बड़े सेटिस्फाइड हैं कि उनको वाकई फाइनली कोई अच्छा सोप मिल चुका है जिसका इस्तेमाल करने के बाद अब उनकी जिंदगी जो है किसी और चीज की उनकी जिंदगी में तलब ही नहीं रही। और इसी के साथ साथ अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, तो भाई उसका हल भी है हमारे पास। आपके लिए व्हाइट एज वाइटामिन सी फेस वॉश मौजूद है और व्हाइट एज का वाइटामिन सी जो फेस वॉश है ना, आय हाय इसकी क्या बात बताऊं, इतना क्रीमी फेस वॉश है क्योंकि इसके अंदर जो इतनी सारी चीजें हैं और ये 100% जो है ना नेचुरल चीजों से तैयार किया गया है। तो अगर आप कोई भी अच्छा वाला फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज का वाइटामिन सी फेस वॉश लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपके हर करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुके हैं। उसके अलावा नहीं मिल रहे तो उसका हल भी बताते हैं कि आप कैसे जो है ना वो अवेलेबल कराएंगे। और साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे एरिया में चलें जी मिल भी जाएं लेकिन हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप ये सीन है कि अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगाना चाहते, आप ऐसा है कि आप कोई फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, फेयरनेस क्रीम के तलाश में हैं, आप डेली बेसिस पर कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं और आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, लेकिन खास करके खवातीन हो या मर्द हजरात हो उनको ऐसा सीन बन जाता है कि भाई गर्मियों के सीजन में आप लोगों को थोड़ो जो है ना यो चीज जो टेंशन हूं आता, गर्मी में असांजी स्किन वधीक खराब थी वेंदी है, गर्मी में तव्हां वटि कोई अहिड़ा प्रोडक्ट ना हूंदा जेके तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कनि, तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त कनि, त तव्हांजे लाइ व्हाइट एज वारनि बाबा इन जो बि हल कढियो आहे, इन जो बि सोल्यूशन मौजूदु आहे। व्हाइट एज जी तव्हां वटि लवली क्रीम आहे ऐं व्हाइट एज जी लवली क्रीम जी अगरि मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त व्हाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे जनाब ही रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे, जेका फेयरनेस क्रीम आहे, हिन में एज लिमिट काई बि कोन्हे का, तव्हां हर उमिरि वारो माण्हू हिन खे इस्तेमालु करे सघे थो। व्हाइट एज जी लवली क्रीम जंहिंमें 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल आहिनि ऐं गॾो गॾु हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड थियल आहे, यानी कि तव्हांखे सन ब्लॉक जेको आहे न उन जो अलॻि सां वठण जो टेंशन न हूंदो। तव्हां ईअं न चवंदा त बाबा हाणे सन ब्लॉक वरी असां काॾां वठूं, सनस्क्रीन वठणु ॾाढी जेको आहे न तव्हां स्किन खे ज़रूरत हूंदी आहे, तव्हां वठण जे लाइ ॾाढो इहो मुश्किल कमु हूंदो आहे। सन ब्लॉक मतिलबु ईअं मूंखे लॻंदो आहे त दुनिया मुश्किल तरीन कमु आहे जेको तव्हांजी स्किन ते सनस्क्रीन जेका आहे उहा सूट बि करे, वठी त ख़ैर तव्हां वेंदा पर सूट जेका आहे न उहा मुश्किल सां कंदी आहे, ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ वॾो मसिलो आहे जंहिंजी स्किन सेंसिटिव आहे ऐं सेंसिटिव स्किन माण्हुनि खे घणी नीड हूंदी आहे त बाबा हू जेका आहे न पंहिंजी स्किन जी हिफ़ाज़त कनि, पंहिंजी स्किन खे प्रोटेक्ट कनि सिज जे असरातनि खां। ऐं अगरि तव्हां मेकअप लॻाईंदा आहियो, मेकअप खां तव्हांखे छुटकारो मिले थो, त पोइ बाबा तव्हां कहिड़ी जेको आहे कहिड़ी तव्हांखे कस आहे, तव्हां व्हाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे ॾिसो, जीअं तव्हांखे ख़बर पवे त बाबा मार्केट में केॾा भला भला प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि ऐं तव्हांखे इस्तेमालु करणु घुरिजनि। व्हाइट एज लवली क्रीम जेका भई तव्हां ॾींहं जो बि लॻाए सघो था, तव्हां राति जो बि लॻाए सघो था, फेयरनेस फार्मूलो आहे, जंहिंमहिल तव्हांजी दिलि चई तव्हां लॻायो, बसि पंहिंजो फेस वॉश कयो ऐं व्हाइट एज लवली क्रीम लॻायो, तव्हां रेडी थी वेंदा। ओके जी, उनखां अलावा चले अगरि तव्हांजो फेयरनेस जो जेको मसलो उहो हल थी वियो, हाणे तव्हां एक्नी जी वजह सां परेशान आहियो, त एक्नी जी वजह सां तव्हां परेशान थियो बाबा, तव्हांजे लाइ हाणे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मार्केट में अवेलेबल थी वियो आहे ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जंहिंजे चेहरे ते काफ़ी सारा एक्नी अची वेंदा आहिनि ऐं एक्नी जी वजह सां तव्हां घणो शदीद परेशान आहियो, भई तव्हां वटि खोड़ अहिड़ा मसला हूंदा आहिनि स्किन ते जेके तव्हां अगरि चाहींदा आहियो त घटायो, उन्हनि खे ख़तमु कयूं, तव्हां खोड़ सारा टोटका ट्राई कंदा आहियो, खोड़ सारा प्रोडक्ट लॻाए ॾिसंदा पर तव्हांखे रिज़ल्ट कोई बि न मिलंदो आहे, त तव्हां वटि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे, ही आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे, मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, हिन जे अंदरि फुल जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि, कोई बि केमिकल न आहे, तव्हांजी स्किन खे कोई नुक़सान पहुचाईंदो ऐं तव्हांजी स्किन खे सिर्फ़ एक्नी खां न बल्कि तव्हांजी स्किन खे इलाही चीज़ुनि खां प्रोटेक्ट करण वारो आहे, जीअं तव्हांजे चेहरे ते एक्नी हुजनि, एक्नी जा निशान हुजनि, ब्लैक हेड्स हुजनि, वाइट हेड्स हुजनि, ब्लैक पॉट्स हुजनि, उनखां अलावा एक्स्ट्रा ऑयल हुजे या फिर तव्हांजे चेहरे ते कहिड़े बि क़िस्म जा एक्नी आहे, हर तरह खां तव्हांजे चेहरे जी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदो आहे ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणींदो आहे, तव्हांजी स्किन क्लियर हूंदी, बेदाग हूंदी, सोणी हूंदी, त तव्हांखे अञा वधीक मज़ो ईंदो बाबा पंहिंजी ज़िंदगीअ में। सो तव्हां पाण इन्हनि चीज़ुनि खां हाणे थोरो सम्झो त बाबा मार्केट में अवेलेबल आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, जंहिंखे तव्हां इस्तेमालु कीअं करे सघंदा, इस्तेमालु करण जो तरीक़ो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां।
त अगरि तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो इस्तेमालु कयो था त तव्हांखे इस्तेमालु ईअं करिणो आहे त तव्हांखे सुबुह जो बि लॻाइणो आहे तव्हांखे शाम जो बि लॻाइणो आहे अगरि घणा सफ़ा एक्ने आहे त तव्हां मंझंदि जो बि लॻाए सघो था टे मरतबा लॻायो ऐं लॻाइण खां पहिरियां तव्हांखे फेस वॉश लाज़मी करिणो आहे पंहिंजो मुंहुं जेको आहे न लाज़मी धोइजो मुंहुं धो क्लीन कयो पाण खे हथ अछे तरीक़े सां तव्हां क्लीन कयो उन खां पोइ तव्हां डॉक्टर पिंपल एक्ने ट्यूब जिते जिते दाणा जिते जिते निशान आहिनि जेके चीज़ूं तव्हां रिमूव करणु चाहियो था उन्हनि चीज़ुनि ते तव्हां लॻाए पोइ तव्हां जेको आहे न छॾे ॾियो त कुझु ई देरि खां पोइ जेको तव्हांजो एक्नी हूंदो न उहो फील कंदव तव्हां वाक़ई त बाबा हिन में फ़र्क़ु अचणु स्टार्ट थी वियो आहे एॾो मतिलबु ही प्रोडक्ट बहितरीन आहे थधो थधो तव्हांखे फील थींदो ऐं तव्हांखे मज़ो अची वेंदो उन खां अलावा वाइट एज लवली क्रीम लॻाइण जो तरीक़ो बिल्कुलु ई आहे तव्हां कहिड़े बि टाइम ते लॻाए सघो था मेकअप जी तरह यूज़ थींदो मतिलबु ईअं न त मेकअप जी जाइ ते यूज़ थींदो बाक़ी ईअं न आहे त हिन में तव्हां ॾिसंदा त बाबा मर्द चवनि त बाबा हीउ हाणे मेकअप आहे असां कोन हणंदासीं न हीअ फेयरनेस क्रीम आहे हिनखे तव्हां सभु लॻाए सघो था पर अर्जेंट में अगरि तव्हांखे तयारु थियणो आहे काॾे वञिणो आहे कोई फंक्शन आहे का पार्टी आहे का शादी आहे कुझु बि आहे त तव्हां वाइट एज लवली क्रीम लॻाए तव्हां मिंटनि में रेडी थी सघो था ऐं हिनखे तव्हां ईअं लॻाईंदा बाक़ी वाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम आहे जेके तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु करे सघो था सुम्हण खां पहिरियों ठीकु आहे लॻाइण खां पहिरियों तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो या तव्हां वाइट एज जो फेस वॉश लॻायो या वरी तव्हां वाइट एज जो साबुण लॻायो ठीकु आहे इहे सभु चीज़ूं आहिनि जेके तव्हां लॻाईंदा तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे वापसि मिलंदी ऐं तव्हां ॾिसंदा त बाबा वाह वाह वाकई कमाल जा प्रोडक्ट आहिनि अगरि तव्हांजे एरिया में नथा मिलनि त पोइ तव्हांखे डायल करिणो आहे 03-15-799-50-0595 ॿुड़ी 315-79-595 ही नंबर आहे जेको तव्हां डायल कंदा तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा तव्हांजे लाइ आसानी थी वेंदी ऐं तव्हां उतां वठी सघंदा उन खां अलावा ॿी बि अलाए कहिड़ी ॻाल्हि जेका तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां पई पर विसरी वई अॼु टॉपिक थोरो ॿुधाए वेठूं था जिन माण्हुनि असांखे हाणे जॉइन कयो आहे त अॼु मूं मूंखां सवाल इहो पुछियो आहे त तव्हां हिकिड़ो फ़र्ज़ु करे वेठो अगरि तव्हांजो जेको फ़ोन आहे ठीकु आहे मोबाइल आहे उनजो स्टोरेज सफ़ा फुल थी वञे ऐं तव्हांजे फ़ोन में सभु चीज़ूं जेके आहिनि इम्पोर्टेंट आहिनि का बि चीज़ तव्हां हुनखे डिलीट नथा करे सघो कुझु ओल्ड मेमरीज़ आहिनि कुझु अहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि जेके तव्हां भई रखणु चाहियो था पाण वटि सो कुझु बि तव्हांखे डिलीट न आहे करिणो तव्हां वटि सभु चीज़ूं इम्पोर्टेंट आहिनि त पोइ इन सूरत हाल में तव्हां छा कंदा

अब ये क्या लॉज है कि मुझे समझ नहीं आती. खैर गाना एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. आपकी सदर आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए. टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है. अभी तो आए हैं. अच्छा तो हमारे साथ ये मौजूद है, एक मिनट. अच्छा AN नूर हमारे साथ हैं. AN नूरपुर से हैं या फिर AN, अच्छा मुझे थोड़ा इनका मैसेज जो ना वो कंफ्यूज कर चुका है. तो AN नूरपुर से हमारे साथ है. आपने गाना लिखा है जी, मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना सुनेंगे. बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहा जाता है. और ये हमारे साथ है मेरी छोटी बहन कुलसुम और मेरे बाबा जान मिस्री की फरमाइश है, प्लीज प्ले कीजिएगा गाना, लिखिए आपका गाना लगाते हैं जी. रसूलाबाद से आब्दुल हुसैन शंभानी है. वालेकुम असलम. टॉपिक असा USB वठंदासीं या वरी कंप्यूटर में विझंदासीं. ठीक है भाई, ठीक है. मीरपुर खास अब्दुल्ला महर ने कहती है, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाए तो मैं डिलीट कर दूंगा. कितनी इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट कर देंगे सच्ची बताए. और चाचा खाले तुम्हारे साथ कहते हैं, बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले OST सुना दीजिएगा. इतना सीडी गाना बोला है, चलिए मैं कोशिश करती हूँ सुनेंगे. और ये हमारे साथ है मिठड़ी सिद्रा मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम अदर. सदर बलोच है मोरो से. आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और आपकी आवाज भी माशाल्लाह मुझे अच्छी लगती है. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. और उसके अलावा वरियाम वाले कहते हैं, टॉपिक फोन की सारी मेमोरी एक दूसरे मेमोरी कार्ड में कॉपी करेंगे तो फिर सारा फोन खाली हो जाएगा, फिर उसमें जो भी करें तो कर सकते हैं. ओके नॉट बैड. अच्छा नाजिश कहती है, लाड़काना सी हमारे साथ है, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हैं, एहसान तो गया. आए हाय क्या बात है. वालेकुम अस्सलाम, आप ही आप कैसी हैं. टॉपिक में अच्छा फोन आपने लिखा है, उसके बाद आपका मैसेज जो ना वो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट हो चुका है. ये पैनल पर पता नहीं क्यों मसला है कि मैसेजेस थोड़े से जो ना वो मिसिंग पार्ट हो जाते हैं. तो आपको वेलकम करते हैं नाजिश मेरी प्यारी जान, आप हमारे साथ हैं. और बताएं जरा आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं. अच्छा हैप्पी कहती है, सिडो जानी मानी खाओ तो सलाह थव. और तुम सुनाओ घर से. नहीं मैं नाश्ता करके आती हूँ.

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना सुनेंगे हम। साथ ही साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से। टॉपिक को फॉलो करते रहे हैं और साथ ही साथ जरा बताइए आप कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से हैं, कौन से

ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कोई भी, मुझे ये लगता है कि कोई भी इंसान इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर उम्र का इंसान इस्तेमाल कर सकता है, हर किसी के काम की चीज है। अगर आप कोई भी जॉब वगैरह कर रहे हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, कोई भी काम धंधा अगर आप करते हैं, तो हर एक इंसान के लिए व्हाइट एज लवली क्रीम बनी है जनाब। ऐसे लड़के लड़कियां हर कोई लगा सकता है, और ये विटामिन से भरपूर फार्मूला है, और इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ग्लो मिलेगा, खूबसूरती मिलेगी, और उसी के साथ साथ आपको सन प्रोटेक्शन भी मिलती रहेगी, आपकी खूबसूरती जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी, और आपकी जो स्किन है वो हमेशा सेहतमंद रहेगी, क्योंकि उसको विटामिन की जो कमी होगी वो भी पूरी होती रहेगी। तो ये बहुत ही कुल मिलाकर अच्छा वाला प्रोडक्ट है व्हाइट एज लवली क्रीम, जो कि आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे। और साथ साथ डायल करती रहिए 03 15 799 0595, बुड़ी 315 79 595। अच्छा, अब्दुल रजाक बलोच हमारे साथ हैं दादू से। ओके जी, वेलकम कहा जाता है। दर्द दिल हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो चंदा जानी, वेलकम टू शो, खुशामदी स्वीटी। सच में? हाँ जी, मैं हूँ।

ये पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा जरा। चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रजाक हैं जी, कहते हैं फौजिया सुमरो सुनाइएगा। बिल्कुल जी सुनाते हैं। आमिर कहते हैं मासूमा में वाइट एश की लवली क्रीम लगाता हूँ और लवली यूज करता हूँ। अच्छा सही है जी, सही है। और अब्दुल रजाक कहते हैं डेडिकेट कंदासी प्यारे सोटर जमाल कुंभर जी नाले चले जी महाला एकदम तो आंजो गानो। चाचा खालिद कहते हैं अगर वाइट एश और डी स्किन हम यूज करेंगे तो आपने कहा कि आपकी जिंदगी से हर कमी खत्म हो जाएगी। वाकई बिल्कुल जी, खूबसूरती के मामले में तो हो ही जाएगी, बाकी अगर और मसले हैं तो उनको आप बैठकर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हर मसले का हल होता है। साजिद अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। अली मुर्तजा कहते हैं स्किन की ब्यूटी का तो हल बताती हो, बाकी जेब की ब्यूटी का हल भी तो बताओ। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि लोग अपने मसले यू से हल करवाते हैं। वाकई ऐसा है। और कहते प्लीज सॉन्ग सुनाएगा सानू तेरे नाल प्यार हो गया। वाह जी वाह, गाना तो अच्छा बोला है, लगाते ही जी आपका गाना और बहुत शुक्रिया। वैसे अगर आप अपनी जेब के ब्यूटी का ख्याल रखना चाहते हैं, वैसे जेब भी खूबसूरत हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, खास करके मर्द के लिए। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि थोड़ा सा कमाना सीखे। मुझे ये लगता है कि मतलब सबको कमाना चाहिए और अल्लाह पाक जो है ना रास्ते पैदा कर ही देता है, इंसान थोड़ी बस कोशिश करे तो सारी चीजें जो है ना वो मिल ही जाती है, मेहनत से और लगन से।

ओके जी, सो बिल्कुल अगर आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो आप वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का परचेज कर सकेंगे ना, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है. थोड़ा सा वैसे अपना भी ख्याल रखा करें और खूबसूरती के मामले में जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करें, क्योंकि अगर आप खूबसूरती के मामले में कॉम्प्रोमाइज करने लग गए तो आपकी जो

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जा ओमान बहरीन कुवैत शाम कतर ए इराक में जवाबी वार। अमेरिकी फौजी अडन ए दिफाई निजाम के निशानो बढ़ाने की दावा। पासदारन इनकलाब मूजिब उर्दन में हमले के नतीजे में अमेरिकी वेढ़ाक जहाज तबाह थे। ओमान में अमेरिका के जदीद रेडार सिस्टम के तबाह किया वो। शाम में भी अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह किया है जैसे नतीजे में केतरा ही अमेरिकी फौजी भी मार वाया। कुवैत ईरानी हमले में बिजली निजाम मुतासिर थियण की तस्दीक करे छी। $12 अरब जा जब्त थियल असासन जारी करण वाले मुआहदे के हतमी शकल डिनी वही है। आपने हर्मुज के जहाजन की अचवन के राबते जो निजाम कायम करण ते इतफाक कयो वयो। ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ जो स्पीकर जो बयान। बाकर कालेबाफ चयो त आपने हर्मुज जो इंतजाम ईरानी कयादत ही तय कंदी।

आहे रुमाण बदिरां रचाउ जी सतह घटाए न्यूक्लियर फाइल शासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक़ डार चयो त अमेरिका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाउ थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो वञे। आबना हरमुज़ मां जहाज 60 ॾींहं ताईं ट्रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टैंडर्ड नेविगेशन जा सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रम्प ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई। सऊदी अरब अरब इमारात टेकाड़ीअ खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ॻाल्हियुनि में ईंदड़ मरहलो सख़्त थी सघे थो। डील में को बि नाकारी नुक़्तो शामिल नाहे।

मुकरर जो फैसलो त थी वियो, छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा अघ बि रोज़ानो मुकरर थींदा, छा रेलवे जो किरायो बि रोज़ तब्दील थींदो, पेट्रोल सां गॾु छा सब्जी गोश्त ऐं फ्रूट्स बि रोज़ महांगा ऐं सस्ता थींदा, पेट्रोल लॻनि जे रोज़ाने वारी फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया, आवाम परेशान।

0: सिक्योरिटी फोर्सेज की वाना में कार्रवाई दहशतगर्दी की वही कोशिश नाकाम सिक्योरिटी जरिए मौजूद फोर्सेज दखण वजीरिस्तान के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरल गाड़ी तबाह कर छी कार्रवाई में एक खारजी जहनुम भेड़ो पंज दहशतगर्द जख्मी थे गाड़ी में मौजूद धमाकेदार मवाद दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल थियणो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460100।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306।

9595 ही नंबर तव्हां डायल कयो तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइट एश हुजनि या वरी डी स्किन हुजनि हिननि जा प्रोडक्ट तव्हां अवेलेबल कराए सघो था अवेलेबल हूंदा तॾहिं त तव्हां जेको न आसानी सां वठी सघंदा इस्तेमालु करे सघंदा सो सभ खां पहिरियों स्टेप इहो आहे त तव्हां अवेलेबल करायो उन खां पोइ वञी वठी अचो उन खां पोइ इस्तेमालु कयो ॾिसो एॾो तव्हांखे लॻंदो हूंदो लंबो चौड़ो प्रोसेस आहे पर ईअं कोन्हे को तव्हां जेको आहे न इहो करे सघो था सो तव्हां थोरी कोशिशि कयो तव्हां जॾहिं बि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻाइणु चाहियो या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो त तव्हां इहो बि ज़रूरु कंदा कयो त तव्हां उन्हनि खे ॿुधायो त तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते ई तव्हां प्रोडक्ट नथा मिलनि ओके सो ॻाल्हियुनि खे थोरो घटि कयो था ई तव्हांखे ॿुधायूं था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे बारे में सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त मां उन्हनि सभिनी माण्हुनि खे ॿुधाईंदी हलां जंहिंजी स्किन सेंसिटिव आहे जेके थोरो परेशान आहिनि पंहिंजी ज़िंदगी में त बाबा असांजी स्किन सेंसिटिव ॿिया मसला खोड़ आहिनि ज़िंदगी में जो वरी स्किन सां रिलेटेड ही वारो प्रॉब्लम बि असांजे ज़िंदगी में आहे त असांजी स्किन सेंसिटिव आहे कोई प्रोडक्ट जल्दी में असांजी स्किन ते सूट नाहे कंदो त उन जे लाइ तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाणे अवेलेबल थी वई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको मेडिकेटेड फार्मूलो आहे डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयार थियल प्रोडक्ट आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहे माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे उन खां अलावा तव्हां अॻु चाहियो था त बाबा असांखे रिज़ल्ट मिले सफ़ा वी आई पी ऐं जल्दी में अगरि तव्हां रिज़ल्ट हासिल करणु चाहियो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो जेका तव्हांखे सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल सां रिज़ल्ट ॾींदी आहे सो बिल्कुलु जी सिर्फ़ दो दिनों में आपको वाज़े नताइज़ के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमालु करना पड़ेगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर जदीद अज़ा मौजूद है जैसे अल्फा आर्बुटीन कोजिक एसिड ग्लूटाथायोन ये सब चीज़ें जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए आपकी जल्द को चमकदार बनाएगा डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपके चेहरे की स्किन काफी ज्यादा डल हो चुकी है आपके चेहरे की स्किन थोड़ी सी सांवली हो चुकी है तो उसको भी कंट्रोल करेगी और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे को चमका देगी और आप बिल्कुल प्यारे प्यारे नोने पुत्र हो जाएंगे और साथ ही साथ अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई फेस वॉश हो सोप हो तो बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको फेस वॉश मिल रहा है तो अगर आप भी डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बताते चलो थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं तो डी स्किन फेस वॉश जो है जनाब ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि भाई आप लोगों की स्किन के लिए सीरम बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिसका अगर आपकी स्किन पे देखा जाए तो क्या काम होगा क्या फायदा होगा तो डी स्किन फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी मॉइस्चराइज रहेगी और क्लीन रहेगी तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे मॉइस्चराइज रहे और क्लीन रहे तो आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए और इसके अंदर जो है ना सीरम्स ऐड किए गए हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और उसके अलावा लगाने के क्या तरीकेकार हैं वो भी बताते हैं लेकिन आप जो है हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो बिल्कुल सी अगर आपको नहीं पता के तरीके का क्या होंगे हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के तो आप ऐसा करते हैं अपना सेल फोन उठाएंगे मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर टाइप करना है LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर और फेसबुक हमारा पेज है जनाब जी लाड़काना FM 88.8 फेसबुक पर आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर कर रहे हैं

ओके तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप एंजॉय कर रहे हो, साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके फीडबैक्स की जाने बातें हैं। तो यहाँ पर अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, भेड़ नोटिफिकेशन पोतो प्रोग्राम बुधन शुरू कयो आहे, कुछ वडन मानन जो फरमाइशों भी हलाईंदा करियो। बिल्कुल जी हुकुम कयो, तमाम जी फरमाइश भी हलाईंदा सी। आई उन का अलावा चाचा खाले तुम्हारा टॉपिक ते जवाब दिनो है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आमिर कहते हैं फिर लंच किस टाइम करती हैं, 3 बजे के बाद। वफा शहजादू बक्सी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम ला जवाब, थैंक यू। किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय अदा की आयो, आओ बी आ गया की आयो, खुश आयो असा खा बगैर, बिल्कुल जी खुश आयो पर तवाजो होजन भी लाजमी है। सो मोटी जो जल्दी सूफियान अहमद हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम। अनवर भाई कहते हैं हम नाइट क्रीम और डे क्रीम वाइट एश दोनों लगाए गए, बिल्कुल जी दोनों लगाइए, रात में वाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाइए और दिन में वाइट एश लवली क्रीम लगाइए, आय हाय क्या बात है। ओके जी सूफियान कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू जी, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं।

लेकिन सिंड्रेला इंतजार नहीं करती. ये थोड़ा सा कैजुअल है लेकिन हाँ हकीकत है. लेकिन आप ऐसे कीजिएगा, डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा. तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए. और इसी के साथ साथ डे स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के तरीकेकार क्या होंगे, अब आप ये सोचेंगे कि भाई जान ये तो सुधरा ने बता दिया कि ये सेंसिटिव स्किन के लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम नहीं लगा सकते. तो बिल्कुल जी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो या फिर नॉर्मल टाइप हो, कॉम्बिनेशन हो, किसी भी तरह की स्किन हो ना, उसके ऊपर आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे तो

595. नंबर जल्दी से डायल कीजिए ताकि आप की करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाए, आप रह ना जाएं भाई, क्योंकि आप भी इस्तेमाल करें जी स्किन ब्यूटी क्रीम. ये इतना परफेक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जानेंगे कि वाकई भाई सिदरा तसफा सही पई जावे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तव्हां खे डी स्किन फेस वॉश भी मिली रहे हो, अगर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण चाहियो था, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड फार्मूले सां तयार थियल आहे, डॉक्टर्स जी निगरानी जे अंदर तयार थियल प्रोडक्ट आहे, सफा प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे, तव्हां लॻाईंदे त तव्हां खे अमीरनि वारी फीलिंग ईंदी, तव्हां

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
1: केटीएन न्यूज़। अमेरिकी वेड़ाक जहाज तबाह थे आयल, ओमान में अमेरिका जे जदीद रडार सिस्टम के तबाह कयो वयो।

0: बचाव वारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त असां ख़िदमती सियासत ते यकीन रखूं था। सभिनी खे गॾिजी मुल्क जी तरक़ीअ लाइ किरदार अदा करणो पवंदो। सियालकोट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ख्वाजा आसिफ चयो त सियालकोट जी तरक़ी ॾिसी दिलि ख़ुशि थींदी आहे। मरियम नवाज़ सियालकोट जी तरक़ीअ लाइ वधीक अरबे रुपियनि जा फंड रखिया आहिनि। सीनियर वज़ीर शर्जी लिना मेमण जी सदारत हेठि बस डिपोज़ लाइ ज़मीन जी फरहमी बाबति इजलास। शर्जी लिना मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत पारां 50 डबल डेकर बसूं ऐं 500 के इलेक्ट्रिक बसूं ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल कयूं पयूं वञनि। डिपोज़ लाइ घुर्बल एराज़ी जी निशानदेही ऐं फरहमी वारे अमल खे फौरी मुकमिल कयो वञे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे। जसकम जे मर्कज़ी सर ते कारकुननि जी गिरफ़्तारी ने बारडन जे अॻवा ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा। पिंगरियो में जसकम कारकुननि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। ठुल में कारकुननि अमरोटी चौक खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी। फुलजी स्टेशन में कारकुननि एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां मुज़ाहिरो कयो। नवाब शाह खिपरो ऐं टंडो आदम में बि एहतजाजी मुज़ाहिरा। गुम थियल कारकुननि जी आज़ादी ऐं अॻवा थियल समूरनि बारनि जी फौरी बाज़ियाबी जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

अमेरिका जा ईरान ते सतेनियन भी मिसाइल हमला पुलन है बिजली घर के निशानों बढ़ायो अमेरिकी हमलन के नतीजे में अठ शहरी शहीद भी जख्मी ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास डाइंदड़ वींदड़ रस्तन रेलवे ट्रैक्स ए पुलन के तबाह कयो वयो बोशेर लोरिस्तान ए बेन शहरन जे बिजली घरन पुलन नेवल ए फौजी अड्डन ते भी हमला अमेरिकी हमलन में गुलिस्तान सूबे में ईरान ए रूस के रेल जरिए गंढींदड़ पुल भी तबाह थी वही अमेरिकी सेनेट का मौजूद ईरान के दिफाई ए नेवल निजाम के बड़ निशानो बणायो वयो आहे। अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जा ओमान बहरीन कुवैत शाम कतर ए इराक में जवाबी वार अमेरिकी फौजी अड्डन ए दिफाई निजाम के निशानो बणाइण जी दावा पासदारन इनकलाब मूजिब उर्दन में हमलन के नतीजे में अमेरिकी वेड़ाक जहाज तबाह थे ओमान में अमेरिका के जदीद रेडार सिस्टम के तबाह किया वो शाम में भी अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह किया है जैं के नतीजे में केतरा ही अमेरिकी फौजी भी मारजी व्या कुवैत ईरानी हमले में बिजली निजाम मुतासिर थियण की तस्दीक करे छी। $12 अरब जा जब्त थियल असासन जारी करण वारे मुआहदे के हतमी शकल डिनी वही है। आबन हार्मुज में जहाजन की अचवन के राबते जो निजाम कायम करण ते इतफाक कयो वयो ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ के स्पीकर जो बयान बाकर कालेबाफ चयो।

थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो वञे। आबनार मुज़मात जहाज 60 ॾींहनि ताईं ट्रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टैंडर्ड नेविगेशन जा सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रंप ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई। सऊदी अरब, कतर, मिसर ऐं गडि॒यल अरब इमारात रेकाड़ीअ खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो सख़्तु

सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के निशानो बणाइण ते गणतीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त अहिड़ा आमला क़बूलण जोॻा न आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस वाना में दहशतगर्दी जी वॾी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फोर्सिस ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े वाना में बारूदी मवाद सां भरियल गाॾी तबाह करे छॾी। कार्रवाईअ में ख़ारिजी जहनम भेड़ो ऐं 5 दहशतगर्द ज़ख़्मी थिया। गाॾी में मौजूद धमाकेदार मवाद दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल थियणो हो। तेल जा अघ रोज़ मुक़रर जो फ़ैसिलो त थी वियो। छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा अघ बि रोज़ानो मुक़रर थींदा? छा रेलवे जो किरायो बि रोज़ तब्दील थींदो? पेट्रोल सां गॾु छा सब्ज़ी गोश्त ऐं फ्रूट्स बि रोज़ महांगा ऐं सस्ता थींदा? पेट्रोल अघनि जे रोज़ानी वारे फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया। अवाम परेशान। बचाव वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त असां ख़िदमत जी सियासत ते यकीन रखूं था। सभिनी खे गॾिजी मुल्क जी तरक़ीअ लाइ किरदार अदा करणो पवंदो। सियालकोट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ख़्वाजा आसिफ़ चयो त सियालकोट जी तरक़ी ॾिसी दिलि ख़ुशि थींदी आहे। मरियम नवाज़ सियालकोट जी तरक़ीअ लाइ वधीक अरबे रुपियनि जा फंड्स रखिया आहिनि। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी सदारत हेठि बस डिपोज़ लाइ ज़मीन जी फरामी बाबति इजलास। शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत पारां 50 डबल डेकर बसूं ऐं 500 इलेक्ट्रिक बसूं ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल कयूं पयूं वञनि। डिपोज़ लाइ घुर्बल एराज़ीअ जी निशानदेही ऐं फरामी वारे अमल खे फौरी मुकमिल कयो वञे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे।

0: लेडी हेल्थ वर्कर्स जो मुतालबन की मनता लाए गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीदन के मजार नालो एतजाज मुख्तलिफ इलाक मायल औरतन लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के PPHI में जिम करण खिलाफ मुजाहरो कयो। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो चवण हो तो सेहत खाते मां PPHI प्रोग्राम में जिम करण वारो फैसलो नौकरियों के तहफुज खिलाफ है। सालन का डोरहान इलाक में बुनियादी सेहत जो खिदमतू सरे अंजाम डेई रही आयु गड़ी खुदा बख्श में एतजाज जो कारण यो है तो ही प्रोग्राम शहीद बेनजीर के दौर में शुरू कयो वयो हो।
1: इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इर्शाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2102
2: अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: अमेरिका जा ईरान जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमला रखण विच ईरान वारन इलाकन में पुलन बिजली घरन सुरंगन ए सामुंडी पानी मिठो कदर प्लांट्स के निशानो बनाए वो हमलन में शहीद थियल चैन ओटन समेत अठ जणन जो तस्वीरू भी जारी केतरा जख्मी ईरानी मीडिया मूजिब अमेरिका मेरी टाइम कंट्रोल टावर के निशानो बनाया जासिक बेट से हजार पानी की फ्राहमी मुअत्तल थी वही सूबे में ईरान ए रूस के रेल जरिए गंढीदड़ पुल भी तबाह थी वही अमरीकी सेंटकॉम मूजिब ईरान के दिफाई ए नेवल निजाम के निशानो बनाया वो है ईरानी फौज जा कुवैत उर्दन ए बहरेन में अमरीकी फौजी अड्डन से जवाबी वार सऊदी अरब के शहर अलकरिज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के मिसाइल से निशानो बनाए वो उर्दन ए कुवैत पारा ईरान के समूरन मिसाइल्स के तबाह करने की दावा कुवैत ईरानी हमलन से भी बिजली घर ए डीसिलिनेशन प्लांट मुतासर थे की तस्दीक भी कर सी अमरीकी मीडिया जो चवण है उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डन से ईरानी हमलन दौरान केतरा ही फौजी जख्मी थे हाँ जंग से गड गालियन वाली पॉलिसी खत्म थी वही ईरान अमरीकी हमला जारी रहने की सूरत में तकरार के इलाकई जंग में तब्दील करने की धमकी दई छी ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रजाई है ईरान की हिकमत अमली जवाबी कार्रवाई से बधल है दुश्मन मिसाइल फायर तेहरान जो जवाब उन ताकतवर हों ईरान जो बुनियादी मकसद दुश्मन के सबक सिखारण ए जंग जो खात्मो है गडियल कौमन में ईरान के नुमाइंदे पारा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमला बंद करण जो मुतालबो ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखी है आखिरी साह ताई वतन जो दिफा कयो वेंदो अमरीकी हमलन में शहीद थियल ईरानियन जो खून जाया थियण न डींदासी नायब वज़ीर-ए-आज़म साहकार की गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गोतरे से मुलाकात इलाकई ए आलमी मामलन बाबत गाल बोल नायब वजीर आजम की इंडोनेशिया के इकतसादी मामलन वाले वजीर से भी मुलाकात इसाकदार अरब मीडिया के डिनल इंटरव्यू में ईरान यूरेनियम बाहर उमान बदरा रचाव की सतह घटाए अमरीका अग में मुतालबो कयो त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम बाहर मुंतकिल कयो वञे आपना हुर्मुस मां जहाज टैरिफ डेण का सिवाय गुजरी सकता स्टैंडर्ड न्यूविकेशन या सर्विस फीस डेणी होंगी ट्रंप गालियन दौरान जाती तौर तो रहनमई कई सऊदी अरब कतर मिस्र गडियल अरब अमारात चाकड़ी के सपोर्ट कर रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस बाना में दहशतगर्दी की वही कोशिश नाकाम बनाए छी बारूद से भरियल गाड़ी धमाके का पेरिया ही तबाह कार्रवाई में एक खारजी जान भिड़ो पंज दहशतगर्द सिक्योरिटी जरिये मूजिब गाड़ी में धमाकेदार मवाद इम्कानी तौर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल थियणो हो घरू वजीर पारा फोर्सेस के भेटा पेश
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
3: जाऊं जलते हैं रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 और 02424601000।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 54 456 तौकीर अहमद 0306

0: जो असांजो टॉपिक जीअं आहे चेक बाउंस, अक्सर अव्हांखे ख़बर आहे त चेक जंहिंखे ख़बर न हूंदी आहे खणी उहो त ईअं पर्ची टाइप ॾेई छॾींदो आहे ऐं जॾहिं हिन सेक्शन खे जॾहिं हू ॾिसंदो ऐं उन ते ॾिसे पियो त सज़ा इहा कीअं थी सघे पई त मां सम्झां पियो चेक ॾियण खां पहिरां उहो ज़रूरु सोचींदो त यार चेक ॾियणु घुर्जी आहे न. सो सभ खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां हिन सेक्शन ते थोरो ओवरव्यू ॾियो त इन जी लीगल डेफिनेशन आहे छा.
1: सेक्शन 489F
0: जी,
1: डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक, जेके असां चवंदो आहे चेक बाउंस. बिफोर जंपिंग ग्रेवली इन टू दिस टॉपिक, मां हिकिड़ो कुझु कॉन्सेप्ट आहिनि उहे क्लियर कंदुमि जेके असांजे ॿुधण वारा आहिनि, ॾिसण वारा आहिनि. बाउंस खां अॻु में त असांखे इहा ख़बर हुजे त चेक ऑनर कीअं थींदो आहे ऐं चेक डिसऑनर
0: कीअं थींदो आहे.
1: चेक ऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की वेन अ चेक इज़ बींग प्रेज़ेंटेड बिफोर द बैंक एंड द बैंक रिसीव्स इट एंड देयर ओन विड्रॉ द कैशिस टू द पर्सन टू होम द चेक इज़ बीन गिवन. ठीकु आहे, त हिकिड़ो माण्हू हुनखे ऑनर ॾिनो, ठीकु आहे, हुनजी तसदीक कई, तसदीक करण खां पोइ हुनखे जेको आहे न अमाउंट कढी ॾेई छॾियो. डिसऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की चेक जॾहिं ॾिनो वियो, वेन द चेक वॉज़ गिवन ऐं चेक वॉज़ रीच टू द बैंक, बैंक मैनेजर या बैंक जो कोई बि अमलो जेको बि हुते वेठो आहे, प्रेज़ेंट कैशियर आहे, सो ही विल सी फ्यू पॉइंट्स की अगरि उहे हुन लीगल पॉइंट्स अगरि लहनि था पिया त ठीकु आहे, अदरवाइज़ चेक विल बी डिसऑनर. जे मिसाल चेक डिसऑनर कहिड़ी सूरत में थींदो आहे त सभ खां पहिरियों इनसफिशियंट फंड हुजे, चेक में अल्टरेशन हुजे. त कॾहिं कॾहिं अल्टरेशन जो सीन इहो हूंदो आहे, मक़सदु पर्पज़ इहो हूंदो आहे अल्टरेशन जो की अमाउंट हिकिड़ो लिखियलु आहे, अमाउंट में कॾहिं असां ज़ीरो वधाए छॾंदाऊं, कॾहिं अघ खे चेंज करे छॾंदाऊं,
0: कॾहिं करेक्शन थियलु
1: हूंदी आहे, करेक्शन थियलु हूंदी आहे, तॾहिं अल्टरेशन चवंदा आहिनि. ॿियो या त अकाउंट सीज़ त नाहे, टियों ट्रांसेक्शन टाइमली रुकी वई आहे या ट्रांसेक्शन रुकाई वई आहे, सो कुझु ॻाल्हियूं उनखे ॾिसी करे चेक खे रिटर्न कयो वेंदो आहे, उन रिटर्न ऑफ चेक खे चवंदो आहे डिसऑनर ऑफ चेक. ऐं ॿियो इन खां अलावा हटी करे टे शयूं ॿियूं बि आहिनि जेके सम्झणु लाज़मी आहिनि हिन चेक वारे इशू में. सभ खां पहिरियों असांखे इहो ख़बर हुजे त ड्रावर केरु आहे, ड्रावी केरु आहे ऐं पेई केरु आहे. तव्हां अगरि चेक खणी ॾिसंदो त हमेशह चेक जे मथो लिखियलु हूंदो आहे पेई, उन जे अॻियां लिखियलु हूंदो आहे बीअरर. पेई उहो माण्हू आहे जंहिंजे नाले ते चेक इज़ बींग इशूड, ठीकु आहे, जेको चेक विड्रॉ कराए सघे थो. ड्रावर उहो हूंदो आहे द वन द पर्सन हू इशूज़ द चेक, जेको चेक इशू कंदो फॉर द पर्पज़ ऑफ कोई बि ट्रांसेक्शन अगरि हुन कई आहे या हुन को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हुनजी रहे थी पई या को प्रोमिस हुन कयो आहे या रीपेमेंट ऑफ लोन आहे, त उहो हिकिड़ो स्पेसिफिक अमाउंट लिखी ॾींदो जेको पेई वञी करे हुनखे विड्रॉ कराईंदो. हाणे किथे विड्रॉ कराईंदो, हुनखे चइबो आहे ड्रावी. ड्रावी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे, हुनखे अमूमन असां हुनखे बैंक चवंदा आहियूं, द प्लेस वेयर द चेक इज़ बींग ड्रॉ या फ्रॉम द पेमेंट इज़ बींग टेकन, हुनखे असां छा चवंदा
0: आहियूं,
1: ड्रावी चवंदा आहियूं. ठीकु आहे, इहे कॉन्सेप्ट मिलाए करे असां छा कंदा आहियूं त इहो कॉन्सेप्ट मिलाए करे इहे सॼे कॉन्सेप्ट ते असां चवंदा आहियूं इहो चेक सां रिलेटेड आहे ऐं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सां रिलेटेड आहे. ऐं अगरि इन में बदनीयती अची वञे ऐं उनजो मिसयूज़ थी वञे, उन कॉन्सेप्ट ते इहो पूरो सेक्शन बीठल आहे 489F, डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक, चेक बाउंस थी वञणु.
0: अच्छा, मतलबु जेको आहे बदनीयती साबित थिए तॾहिं ई सेक्शन थिए पियो, अदरवाइज़
1: बदनीयती ईअं बाबति. त मां रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी हिकिड़ी अथॉरिटी पढ़ा पियो, उनमें टे इनग्रीडियंट्स इंपॉर्टेंट आहिनि डिफाइन करण जे लाइ, त वाकई उनमें जेको आहे न चेक जेको बाउंस थियो आहे, उनमें टे शयूं अगरि लाज़मी आहिनि त चेक डिसऑनेस्टली बाउंस थियो आहे. सपोज़ सभ खां पहिरियों इशू, उहो कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे, कंहिं इशू कयो आहे, ठीकु आहे. ॿियो हुन में ॾिठो वेंदो त जे पर्पज़ सां इशू कयो आहे, उनजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन्स छा आहिनि, ठीक आहे, छा उहो प्रोमिस जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, रीपेमेंट ऑफ लोन जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, हुनजी लीगल कैपेसिटी छा आहे, उहा कंहिं एग्रीमेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिनो वियो आहे. टियों पर्पज़ इहो आहे त चेक इशू करण जे टाइम, चेक इशू करण जे टाइम छा उन में डिसऑनेस्टी शामिल हुई.
0: ओके,
1: अगरि डिसऑनेस्टी शामिल हुई त जेको आहे न चेक डिसऑनर, या हुनखे असां चवंदो 489F, dishonestly issuing the
0: check.
1: माज़रत, dishonestly issuing the check.
0: All right. शेबा साहब, जीअं अवां ॻाल्हि कई मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि त रीज़न्स थी सघनि पिया चेक जेको आहे डिसऑनर थिए पियो, हुन में हिकिड़ो रीज़न इनसफिशियंट बैलेंस बि थिए पियो.
1: जी जी.
0: फॉर एक्सटेंस अगरि ॻाल्हि कयूं, कंहिं लख रुपए जो चेक कंहिं ॾेई छॾियो, ठीकु आहे, ऐं कोई बि बैंक चार्जिस कॾहिं कॾहिं कटिजी वञनि पिया, मंथली तव्हांखे ख़बर आहे त डेटा या बंडल एक्टिव हूंदा आहिनि, पोइ उहो जेको आहे न इनसफिशियंट बैलेंस जी वजह सां बि जेको आहे न चेक रिटर्न हलियो वेंदो आहे. त छा इहो अचे पियो डिसऑनेस्टली हिन में इन सेक्शन जे अंडर?
1: बदनीयती डिसऑनेस्ट, माना अगरि बदनीयती खे सभ खां पहिरियों डिफाइन था कयूं कि सिचुएशन छा हुई. हिकिड़ो माण्हू मुआदो थो करे, कोई बि हिकिड़ो लीगल एग्रीमेंट थो करे कि मां तव्हां खां गाॾी हिकिड़ी मोटरसाइकिल आहे जेकी तव्हां खां मां 2 लख रुपए में वठां थो फॉर एग्ज़ाम्पल. हाणे हुन 1 लख जो तव्हांखे नेट कैश ॾेई छॾियो, जेको ॿियो चेक आहे हुन छा कयो, बकाया जेकी पेमेंट आहे उहा चेक जी सूरत में तव्हांखे हुन हैंड ओवर कयूं, त हिन ई महीने जे अंदरि 15-15 ॾींहं जे डिफरेंस सां तव्हां 2 डिफरेंट चेक डिफरेंट हुन स्पेसिफिक डेट ते वञी करे तव्हां विड्रॉ कराए सघो था.
0: सही.
1: 1 लख रुपियो हुन ॾेई छॾियो, ट्रांसेक्शन थी वई, कंसीडरेशन थी वई. कारण कंसीडरेशन में हिकिड़ी टर्म तव्हां पढ़ी आहे, कोई पूरो कयो, मतिलबु रिटर्न ऑफ समथिंग. रिटर्न ऑफ समथिंग में छा आहे, तव्हां गाॾी हैंड ओवर करे छॾी, हाणे तव्हांजे लाइ कंसीडरेशन अमाउंट आहे, हिकिड़ो हाफ अमाउंट मिली वियो, हाफ अमाउंट रहे थो. हाणे 50,000 जा हुन ॿ चेक तव्हांखे ॾेई छॾिया. फोर सपोज हुन तव्हांखे 1 लख रुपियो ॾिनो, 1 लख रुपए खां पोइ हुन पहिरीं ट्रांसेक्शन थ्रू कराए छॾी जंहिंमें तव्हां कैश विड्रॉ करे छॾियो. लेटर ऑन कुझु रीज़न जे करे या कुझु एमरजेंसी जे करे हुन पैसा अमाउंट विड्रॉ कराए छॾिया. ठीकु आहे, हुन में हुन बदनीयती ज़ाहिर नथी थिए. छो त पहिरियों त हुन तव्हांखे 1 लख रुपए हिते स्पोर्ट ॾिनो, वरी हुनखां पोइ जेको तव्हां पहिरियों जेको चेक आहे जॾहिं तव्हां विड्रॉ करायो त उहो बि हुन में अमाउंट अवेलेबल हुयो, ऐं उहो तव्हांखे सफिशियंट रीज़न ॾिए थो त मां तव्हांखे छोकि कुझु अमाउंट कढाए वरितो आहे, अमाउंट कुझु मां 10,000, 15,000, 20,000 कढाए छॾिया, बाक़ी जेको आहे न मां तव्हांखे या त हिन चेक जी सूरत में मां हिन में विझराए छॾो त बाद में कढाए छॾो. त हिते डिसऑनेस्टी न आहे. हाणे डिसऑनेस्टी कॾहिं थी क्रिएट थिए, तव्हां खां 1 लख रुपियो तव्हांखे ॾिनई, तव्हांखे गाॾी वरितई, जीअं तव्हां पहिरीं पेमेंट लाइ चेक खे विड्रॉ कराइण लाइ वियो, उहो थी वियो तव्हांजो डिसऑनेस्ट
0: थी वियो.
1: ठीकु, तव्हां सम्झो, ठीकु आहे, इट्स ओके. तव्हां हुनखे ॿुधायो त बाबा हीउ मुंहिंजो चेक, हुन चयो ठीकु आहे साईं मां पैसा विझराए थो छॾां. तव्हां वरी ॿीहर वियो, वरी डिसऑनर थी वियो, वरी तव्हां जेको ॿियो चेक तव्हांखे ॾिनी पर तव्हां उन लाइ बि वियो त उहो बि डिसऑनर थी वियो. त नाओ द इंटेंशन शुरू खां ई वठी हिननि जो बदनीअ थी
0: आहे,
1: शुरू खां ई वठी इंटेंशन हुन में ज़ाहिर थो थिए त हिननि जेको असांखे चेक जेको इशू कयो आहे उन में डिसऑनेस्टी शामिल आहे.
0: ओके, मतिलबु डिसऑनेस्टी जेका आहे त उहा जॾहिं ज़ाहिर थिए त अंडर दिस सेक्शन जेको
1: आहे लागू थी वेंदी.
0: ओके, सो कुझु फीडबैक बि आहे जेको मां प्रोग्राम में शामिल करण वारो आहियां. शहबाज़ साहब, स्क्रीन ते बि काफ़ी सारा मैसेजेस अचनि पिया जेके मां पहिरियों बि अनाउंस करे चुको आहियां त सॼा त शामिल न थी सघंदा आहिनि, टाइम घटि हूंदो आहे, हिन जे लाइ असां थोरा थोरा शामिल कंदासीं. सो हिकिड़ो ही वॉइस नोट ऐं ही छा पिया चवनि अचो ॿुधूं पिया.
2: अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद. सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, अगर हमें कोई फेक अकाउंट या क्लोज अकाउंट का चेक दे दे तो उसकी पनिशमेंट क्या बनती है, उसे सजा क्या मिलेगी, तो प्लीज सर हमें गाइड कीजिएगा.
0: अच्छा शहबाज़ साहब, हिननि त फेक अकाउंट जी ॻाल्हि कई आहे. ईअं अक्सर ॾिठा आहिनि मूं बि माण्हू काफ़ी, हुन वटि 3-4 चेक बुक्स हूंदियूं आहिनि, पोइ उन मां हुनखे जस्ट ख़बर ई आहे उहो जेको आहे त हासिलु करणु चाहींदा आहिनि त असांखे जस्ट टाइम खपे. जीअं तव्हां अॻाणी ॻाल्हि कई त चेक बैलेंस न हूंदो आहे, पोइ हुन ॾे फोन कंदो आहे, चवंदा ठीकु आहे मां बैलेंस विझिरायां थो. हाणे हिन विच में घणा ॾींहं हुनखे मिली विया?
1: बिल्कुलु,
0: छा इहो साबित करण लाइ काफ़ी न आहे त या डिसऑनेस्टी आहे उहो ॾींहं पियो हासिल करणु चाहे जेको क्लियर असां सां ॻाल्हि न पियो करे?
1: सो वापसि उन टॉपिक ते अचूं था जिते छॾियोसीं, त पहिरियों त तव्हां इंटेंशन ज़ाहिर कंदो. अगरि हिकिड़ो फाइनेंशियल ट्रांसेक्शन थिए थी, उहा कंटिन्यूस आहे, ऑल ऑफ सडन किथे ब्रेक थी थी वञे, कुझु लीगल मामला जे करे या फाइनेंशियल इशूज़ जे करे उहो तव्हांखे हिकिड़ी पेमेंट न ॾिनो आहे, पर असां हुनजी जेकी प्रीवियस इंटेंशन आहे उनखे ज़रूरु ॾिसंदासीं त प्रीवियसली हुन असांखे जेकी रक़म आहे उहा टाइम ते पेमेंट कंदो आयो
0: आहे.
1: पर जेकॾहिं इंटेंशन शुरू खां ई वठी करे इंटेंशन बदनीयती ते शामिल आहे त उहा डिसऑनेस्टी में हलियो थो वञे, जंहिंजे लाइ असां लाइ इहो पूरो जो पूरो सेक्शन अवेलेबल आहे. हाणे एज़ पर जे तव्हांजो सुवाल आयो त फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक अकाउंट आहे या जेको
0: आहे
1: चेक जेको आहे न उहो बि जेको आहे न जाली चेक थो असांखे ॾिए. हाणे इहो हिकु न, इहो ॿ खां टे सवाल आहिनि.
0: ओके,
1: सभ खां पहिरियों त हो फोर्जरी क्रिएट करे थो पियो. फोर्जरी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की कंहिं बि माण्हू खे डिसीव करणु, कुझु अहिड़ो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे जेको हुनजी या त ज़ातियात खे अटैक करे या त उनखे नुक़सान पहुचाए, हिकिड़ो फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करणु. ठीकु आहे, ॿियो फेक अकाउंट. फेक अकाउंट बि माना ईअं सम्झो त चीटिंग में थो हलियो वञे, छो त डिसऑनेस्टी शामिल आहे. डिसऑनेस्टली को माण्हू कंहिंखे फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक चेक हैंड ओवर करे छॾे, हुन खां पोइ हे बि सेक्शन हुनजे मथां लागू थो थी वञे त उन जेको चेक ॾिनो उहो बि डिसऑनेस्टी सां ॾिनो आहे. सो इन्हनि टिन्हनि सूरत में हिकु न बल्कि टे सेक्शन जे मथां लागू था थियनि. चीटिंग जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे, फोर्जरी जो भी सेक्शन लागू थो थी वञे ऐं 489F जो सेक्शन बि लागू थो थी वञे ऐं इन टिनिनि में तव्हां हिकिड़ी शइ कॉमन ॾिसजो देट इज़ अ डिसऑनेस्टली
0: ओके
1: डिसऑनेस्टी तव्हांखे टिनिनि शयुनि में कॉमन नज़र ईंदी जंहिंजो पर्पज़ इहो आहे टू चीट समवन आहे त शइ डिफरेंट आहे 420 आहे चीटिंग डिसीव करणु कंहिंखे धोखो ॾियणु हिन में छा आहे त हिन में असां इंटेंशन ॾिसंदाऊं चीटिंग में इंटेंशन फ्रॉम द स्टार्टिंग खां धोखो ई आहे अ पर्सन हू इंटेंशनली इंड्यूस समवन टू बिलीव दैट दैट थिंग इज़ अ ट्रू हुनखे बिलीव थो कराए ऐं उनखां उहा शइ गेन थो करे इनखे असां चवंदा आहियूं की इलीगल लॉस एन इलीगल गेन इलीगल लॉस कंहिंजे लाइ आहे जंहिंजी शइ आहे हुनखे त लॉस थी वियो इलीगल गेन कंहिंजे लाइ आहे जंहिंखां हुन उहा शइ इलीगली तरीक़े सां वापसि माना इलीगल तरीक़े सां एडॉप्ट कई आहे वरिती हुनखां गेन कई हुनजे लाइ छा थींदो इलीगल गेन सो चीटिंग में डिसऑनेस्टी शुरू में ई इन्वॉल्व आहे की हुनजो इंटेंशनली जेको इंसेप्शन खां जेको पर्पज़ आहे उहो चीटिंग ई आहे इन ई अगरि तव्हां डिसऑनेस्टी में अचो था हिते डिपेंड करे थो त चेक कहिड़ी ट्रांसेक्शन में कहिड़े प्रॉमिस में कहिड़ी सूरत में कहिड़ी ऑब्लिगेशन में ॾिनो वियो आहे अगरि शुरू में बदनीयती नाहे पेमेंट्स रवा आहे पेमेंट ट्रांसेक्शन फ्रीक्वेंटली थींदी थी अचनि ऐं कुझु फाइनेंशियल इश्यूज़ जे करे उहो कंप्लीट न करे सघियो आहे त असां हुनखे बदनीयती न चवंदासीं छो की हुनजो हिकिड़ो सॉलिड रीज़न हूंदो अगरि हुनजी शुरू खां ई वठी ट्रांसेक्शन रुकियल आहे ऐं शइ ट्रांसफर थी वई आहे हाणे उहो चए थो उहो तव्हांखे शइ नथो ॾे ना उहा हुन एम्बिट में ईंदी त हुन डिसऑनेस्टली सां इहा शइ तव्हांखे इशू कई आहे हिन जो मां हिकिड़ो वॾो मिसाल ॾियां हिकिड़ी तमामु बहितरीन मुंहिंजी फेवरेट हिकिड़ी मूवी आहे टॉम हैंक्स जी ऐं लिनाडो डिकैप्रियो जी हिकिड़ी वॾी बहितरीन मूवी आहे जेकी टोटली हिन सिस्टम ते ठहियल आहे हुन मूवी जो नालो आहे कैच मी इफ यू कैन
0: ओके
1: ऑस्कर में वई नॉमिनेटेड थी त उन में सॼो जेको बैंकिंग सिस्टम आहे की उन में फ्रॉडुलेंटली कोई इंसान फेक चेक जे थ्रू बिलीनियर थी सघे थो पियो छो की 1960s में अर्ली 70s में एॾी माना डिजिटलाइज़ेशन न हुई त जेकी जंहिंजे थ्रू रोकथाम करे सघिजे त देट मैन यूज़िंग द फैक्ट चेक ऐं फोर्स डॉक्यूमेंट्स टू टू गेट सो मेनी ट्रांसेक्शन ऐं ही बिकम्स बिलीनियर हो उन टाइम ज़माने जो जेको आहे न ही बिकेम बिलीनियर एट देट टाइम हे रियल स्टोरी ते हिकिड़ी मूवी आहे त उहा सॼी रिलेटेड ई हिन चेक सां आहे नॉलेज मिलंदी आहे सो अगरि मूवी सुठी आहे ऑस्कर में नॉमिनेटेड आहे ऐं स्टोरी सुठी आहे त देयर इज़ अ छा चवंदा आहिनि यू कैन सी इफ यू आर फॉर योर एंटरटेनमेंट
0: शिवा साहब ब्रेक ते वञण खां पहिरां पाण हिते डिस्कस करे रहिया हुआसीं मूं तव्हांखे चयो त सिक्योरिटी चेक ते पाण ॻाल्हाईंदासीं उन जी तरफ़ हलण खां पहिरां अव्हां जो पर्पस ॿुधायो त वॉट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन
1: हिन सेक्शन जो पर्पस पाकिस्तान पिनल कोड में एड करण जो इहो हुयो त जेकी बि बैंकिंग सां रिलेटेड जेकी बि फ्रॉड आहिनि या चेक सां जेकी फोर्जरी आहे चेक जी या जेकी बिज़नेस ट्रांसेक्शन थियनि थियूं बिटवीन द बायर एंड द सेलर या ट्रेडर्स एंड सेलर जे विच में ऐं जेको बि मिसयूज़ थिए थो बैंकिंग सिस्टम में उनखे रोकण जे लाइ इहो सेक्शन हिन में एड कयो वियो जीअं इन निज़ाम खे सुठो करे सघिजे ऐं जेको आहे न इन्हनि कारवाइनि खां बची सघिजे मेन पर्पस हिन जो इहो
0: मेन पर्पस हाणे असां पाण अगरि सिक्योरिटी चेक ते ऐं उहो डिसऑनर थिए पियो उन ते जेको आहे त कीअं कारवाई थी सघे पई या जीअं सिक्योरिटी चेक ॾिनो आहे उहो जेको आहे त डिसऑनर थी सघे थो उन ते एफ आई आर बि थी सघे थी या उन ते नथी थी सघे
1: हाणे डिपेंड करे थो त एज़ अ सिक्योरिटी पर्पस ॾिनो वियो आहे चेक छा उहा उहो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट थी आहे अगरि जेकॾहिं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट न थी आहे त सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ जेको ॾिनल चेक आहे उहो ऑटोमेटिकली डिसऑनर जी हुन में ज़िमेरे में न ईंदो एबिट में न ईंदो अगरि ट्रांसेक्शन थी वई आहे कम्युनिकेशन थी वई आहे प्रोमिस जेके न प्रोमिस्ड जेके कंडीशन्स आहिनि उहे पूरी थी वई आहिनि एज़ पर कॉन्ट्रेक्ट ऐं चेक इशू थियो आहे भले चए उहो सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ छो न इशू थियो हुजे पर हुन में डिसऑनेस्टी शामिल आहे त सभ खां पहिरियों उन में इहो ॾिठो वेंदो त कॉन्ट्रेक्ट जी जेको लाइबिलिटी आहे उहा कंहिंजे मथां आहे इशू कंहिं कयो आहे ऐं कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे रिसेप्ट्स ॾिठियूं वेंदियूं अगरि उन में उहे शयूं शामिल आहिनि त उहा डिसऑनेस्टी आहे अगरि उन में उहे शामिल न आहिनि त ऑटोमेटिक जेको आहे उन में इहा डिसऑनेस्टली डिसऑनेस्टी शामिल नथी थिए चेक बाउंस जी
0: अक्सर हिकु दफ़ा बल्कि कई दफ़ा ईअं थी चुको आहे त हिकिड़ो चेक जेको हूंदो आहे हिकिड़ी पार्टी जो कंहिंखे ॾिनल हूंदो आहे ऐं उहो फॉरवर्ड थींदो रहंदो आहे उहो थर्ड पर्सन ते पहुतो फोर्थ पर्सन ते पहुतो हुनजी पेमेंट क्लियर न थी उहो वञी करे चेक जेको आहे त बाउंस कराए पियो ऐं चेक जंहिंजे नाले ते आहे हुन ते बाउंस हुनजो डिसऑनर थी वियो त छा उन ते एफआईआर थिंदी हु तो उन पार्टी के सुनियाने ही कोन चेक फॉरवर्ड तो थिंदो रहे
1: यो ता के बधायम त चेक देन खाग में पहली गाल त कदे भी ब्लैंक चेक दीजे ही ना
0: ठीक है
1: चेक में डेट लिखा
0: टाइटल लाजमी लिखे
1: टाइटल लाजमी है केजे नाले ते वने तो बैंक जो नालो वने तो अगर मिसाल ता को कांटेक्ट क्रिएट ता के पया उन कांटेक्ट में ता लिखत वटो कोई भी कॉन्टेक्ट लिखत का सिवा तो पूरा ही ना अगर ना है तो उन शाहिद जरूर तुम वन उनमें बैंक जो नालो हो जे डेट डेनल हो जे पर्पस डेनल हो जे बैंक चेक जो नंबर डेनल हो जे उन केड़े पर्पस ला यो चेक डिनो तो वे वो भी उनमें अवेलेबल हो जे तो उनका पो अगर कोई उनके बाउंस कराए तो पे उनमें पैसा सपोज कें भी बैंक में वही कर विड्रॉ कराए तो पे पे या विड्रॉ कराए तो उनमें सफिशेंट अमाउंट आ या वो अकाउंट सीज आ या उनमें चेक में अल्टरेशन थे ला तो डेफिनेटली को उनमें बैंक जो मेमो लगन हो हाने मेमो चाहे मेमो में सजी जो तक ट्रांसफर बुधा तो वो मेमो में वो शूं लिखी दींदा या उनमें कढ़ी कर उनके दींदा तो बाबा इन में को अमाउंट ही ना है अकाउंट सीज आ या इन में इनसफिशेंट अमाउंट आ या जी डेट आ भी जन में जी सिग्नेचर थे वह सिग्नेचर उन मैच ही नी कर पे ड्रावर से जो चेक इशू तो करे पो ठीक है उहे सॼियूं टर्म्स हिकिड़े रिटन सूरत में अवेलेबल करे उनखे ॾेई छॾंदा जेको पे ई आहे उहो चाहे उनखे जेको आहे न एज अगरि उनमें डिसऑनेस्टी शामिल आहे त हू उन जे ख़िलाफ़ एफ आई आर दाख़िल कराए सघे थो
0: हाणे
1: सॻियल छा सिक्योरिटी पर्पस जे लाइ मां चयुमि समटाइम सिक्योरिटी पर्पस जा जेके चेक्स हूंदा
0: आहिनि
1: उहे बि डिसऑनेस्टी में शामिल थींदा आहिनि अदरवाइज़ सिक्योरिटी पर्पस जा जेके चेक्स हूंदा आहिनि डिसऑनेस्टी में शामिल न थींदा
0: सो कुझु फीडबैक आहे असां प्रोग्राम में शामिल कंदासीं
3: प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियूं मुंहिंजो नालो अब्दुल गफूर कलादी आहे ऐं मुंहिंजो तालुक घोटकी शहर सां आहे साईं हिकिड़ो सवाल हुयो तव्हां खां छा सिक्योरिटी चेक बाउंस थियण ते सेक्शन 499 एफ बि लागू थी सघे थो
1: सिक्योरिटी अगरि चेक ॾिठो अगरि चेक बाउंस थिए थो पियो या चेक डिसऑनर थिए थो पियो त हुनजी क्रिमिनल लाइबिलिटी कहिड़े पर्पज़ सां ऐं कहिड़ी ट्रांसेक्शन में जेको आहे न ॾिनो वियो आहे इशू खे कयो अगरि उहे शामिल आहिनि त ठीकु आहे अदरवाइज़ जेको आहे न सिक्योरिटी पर्पज़ सां जेको रिलेटेड चेक आहे उहो जेको आहे न एज़ अ डिसऑनर नथो थी सघे माना उनमें इंटेंशन लाज़मी
0: आहे
1: डिसऑनेस्टी जो
0: उमेद आहे तव्हांखे जवाबु मिली चुको हूंदो अच्छा हिकिड़ो वॉइस नोट ॿियो बि आहे प्रोग्राम में मां शामिल कयां पियो
4: वालेकुम आई एम मोहम्मद मेहदी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी कंप्लेन दर्ज करवाने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है
0: ठीक है आपका जवाब देते हैं
1: महाराज जो टे कंडीशन अगर टिन कंडीशन से अगर वो कोई भी चेक बीहे तो उनमें क्रिमिनल लाइबिलिटी लगी थी जी मां तव्हांखे चयो हू इशूड द चेक
0: यस
1: व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ इशूअंस ऑफ चेक एंड फॉर व्हिच थिंग इट वॉज इशूड प्लस में देर वॉज एन इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी इंक्लूडेड अगर ये टे शयूं आहिनि चेक विल बी डिसऑनर अगर चेक न आहे त उहो क्रिमिनल लाइबिलिटी में न ईंदो
0: ठीकु आहे अच्छा हाणे एफ आई आर ते हिननि जो सवाल आयो हाणे असां प्रोसीजर ई तरफ़
1: ॾिसूं
0: पिया चेक डिसऑनर थिए पियो ऐं एफ आई आर जे लाइ जेको आहे त थाणनि ते वञनि पिया माण्हू त अव्हांखे ख़बर आहे त एफ आई आर त सुथरी थिए कोन पई पाण त उन खां पहिरियां जेको आहे त मामला सेट थी वञणु घुरिजनि या तव्हां रिकमेंड इहो कंदो त एफ आई आर ई कराइणु घुरिजे
1: मां अॼु खां 6 महीना 7 महीना अगरि असां पोइ हिते हलिया वञूं त पाण हिकिड़ो प्रोग्राम कयोसीं मिली करे अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसिंग थीम आहे हिन वक़्तु जेको इहो हले थो पियो त उन में मेजोरिटी ऑफ द केसिस अहिड़ा जेके सालनि खां पेंडिंग में पिया आहिनि ऐं उन जो को हिकिड़ो कंक्लूजन नथो निकिरे साल ब साल अगरि मिसाल को वालिद आहे उहो केस थो करे त अगरि उहो मिसाल को ग्रैंड पेरेंट आहे उहो केस करे थो त पुट था अचनि पुट केस अगरि केस हलाईंदे हलाईंदे वीचारा फोत था थी वञनि त पोटा था
0: अचनि
1: सो सालनि जा साल केस हलंदा रहंदा आहिनि कंक्लूजन निकिरंदो पर वॾे टाइम माना हिकिड़ो लेंथी प्रोसेस थी वेंदो उन लेंथी प्रोसेस खां बचण जे लाइ ऐं हद खां वधीक एक्सपेंसिस यूज़ करण खां बहितर आहे त अगरि इन प्रोसेस खे थ्रू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जेके असां आर्बिट्रेशन ऐं मीडिएटेशन चवंदा आहियूं हिन सिचुएशन में अगरि नेगोशिएबल जेके असां नेगोशिएशन सो नेगोशिएशन्स में वञी करे इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे छोकी ॿ पार्टियूं वेही करे ईज़ीली इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे सघनि थियूं अदरवाइज़ न कंदो त हुन में जे क्रिमिनल लिटिगेशन ऐं सिविल जेके आहे न लिटिगेशन ॿई हिन में इनवॉल्व्ड आहिनि
0: अच्छा हिकिड़ो कॉलर शामिल करे मां हिन सां रिलेवेंट तव्हां सवाल कंदुसि अस्सलाम वालेकुम
5: हाँ सर असो केस आको जमीन
0: जी
5: कोर्ट में न तो थे तो उनमें वो जो सिविल कोर्ट में वो क्यों यो मसलो घर की सनत आस विधो कोर्ट शिकारपुर में हाँ वो चे तो सिविल कोर्ट में वो जज जो
1: मुख्य यो लगे तो अगर जमीन जो मसलो आ 145 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यो हों तो एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दिंदा कें भी हद के मैजिस्ट्रेट वट कि प्रॉपर्टी से जो न माना ये समझो तो जान जो खतरो तो काते डेथ भी थी वे उते इंटरवीन कयो ऐं प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट कयो पर इन मामलनि में मैजिस्ट्रेट छा कंदो आहे पुलिस खां रिपोर्ट घुराईंदो आहे ऐं ॾिसंदो आहे त अगरि जहिड़ो अध खां वधीक वधियल आहे त ॿिन्हिनि पार्टीज़ खे जेको आहे न घुराए करे मसइले खे सॉर्ट आउट कराईंदो आहे अदरवाइज़ इहे सिचुएशन्स काॾे हलिया वेंदा आहिनि सिविल हुन में सिविल लिटिगेशन्स में अगरि इंटाइटलमेंट सां इशू आहे प्रॉपर्टी कंहिंजे नाले ते आहे त डेफिनेटली उहो जेको इशू वेंदो उहो सिविल प्रोसीजर में हले वेंदो ऐं सिविल लिटिगेशन में वेंदो डिक्लेरेशन में हलिया वेंदा हिन खे त सिविल सिविल कोड वञी करे डिक्लेरेशन घुरनि ऐं पार्टीशन जी डिमांड करनि
0: ऑल राइट सो हिकिड़ो वॉइस नोट आहे प्रोग्राम में हींअर शामिल कंदुसि लेट्स सी छा पिया चवनि
6: सर आउं फयाज़ अहमद खैरपुर खां अव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहियां सर हिन टॉपिक जे हवाले सां मुंहिंजो हिकिड़ो सुवालु आहे अदालत में चेक बाउंस वारो केस आमतौर ते केतिरो वक़्तु हली सघे थो ऐं मुतासिर माण्हुनि खे कहिड़ो रिलीफ मिली सघे थो
0: ठीकु आहे तव्हांजी महिरबानी अदा फयाज़ तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया तव्हांजो फीडबैक बि शामिल कंदासीं ऐं हिकिड़ो ॿियो वॉइस नोट आहे इहो शामिल करे पाण खे प्रोग्राम कंक्लूड करणो आहे पंज मिंट अची बचिया आहिनि ठीकु आहे सो ही छा पिया चवण अचो ॿुधूं पिया
7: मुंहिंजो सर शहबाज़ खां हिकिड़ो नंढो सवालु हुयो त अगरि कोई माण्हू असांखे चेक ॾिए थो कंहिं बि डेट जो ठीकु आहे त अगरि उन जे अकाउंट में उन वक़्तु पैसा न आहिनि त पोइ छा असां उन जे ख़िलाफ़ काई कानूनी कारवाई करे था सघूं
0: अदा थोरो सबुर कंजो यकदमि तकड़ा न थीजो
1: मां तव्हांखे उहा ई ॻाल्हि कई त इंटेंशन ॾिठो वेंदो अगरि ट्रांसेक्शन मुसलसिल हलंदी थी अचे त हुन में बदनीयती शामिल न आहे
0: अच्छा अक्सर इन सिचुएशन में ईअं थींदो आहे त चेक ॾींदड़ जेको आहे न अगरि हुनखे टाइम खपबो आहे त उहो फ्राइडे ते ॾेई छॾंदो आहे ठीकु आहे चवंदो आहे ॿ ॾींहं मूंखे मिली आहे मंडे ते वञी करे हू कराए ऐं उनखे एॾो ख़्यालु हूंदो आहे जो फोन कंदो आहे यार हाली फ़िलहालु तव्हां बैंक न विझो मां पेमेंट क्लियर करायां विझरां अमाउंट विझरां देन तव्हां कजो पर कुझु माण्हू इलाही तकड़ा हूंदा
1: आहिनि
0: असां वञूं पिया
1: आई थिंक अफ़ज़ल सवाल कयो अफ़ज़ल जो बि इहो ई सवाल आहे
0: जी जी
1: त असां इंटेंशन ॾिसंदऊं
0: छा
1: हुन में क्रिमिनल इंटेंशन या डिसऑनेस्टी जेकी आहे न अवेलेबल आहे या न आहे अगरि डिसऑनेस्टी शुरू खां ई आहे
0: जी जी
1: त उहो चेक जेको आहे न क्रिमिनल हुन में जुरिसडिक्शन में हलियो वेंदो अगरि डिसऑनेस्टी न आहे उहो सिविल लिटिगेशन में वेंदो अगरि सपोज़ हुन खां पोइ अमाउंट नथो ॾिए पियो हाणे अमाउंट रिकवर करणो आहे त सूट फोर असां रिकवरी में हलिया वेंदा या समरी सूट असां हुनखे चवंदा
0: मतिलबु 489F में जेको आहे त डिसऑनेस्टी अगरि साबित थिए पई त हीउ सेक्शन तहत
1: इंग्रीडियंट्स कुझु मिंट अॻु में जेके ॿुधायां थो उहे टई इंग्रीडियंट्स अवेलेबल हुन में आहिनि ऐं चेक डिसऑनर थिए थो विथ मेमो
0: ओके
1: त उन खां पोइ तव्हां जेको आहे न कहिड़े हुन में वञी सघो था छा चवंदा आहिनि एफ आई आर में वञी सघो था अदरवाइज़ न त सिविल डिस्प्यूट आहिनि सिविल जुरिसडिक्शन में वेंदा छोकी अमाउंट ओतिरो ई रिकवर
0: थींदो
1: फाइन ऐं पनिशमेंट
0: पाणी ॿुधे पनिशमेंट केतिरी आहे सर अगरि मिसाल चेक बाउंस थिए पियो डिसऑनर कराए पिया वचनि ऐं डिसऑनेस्टी वाक़ई साबित थिए पई हिकु माण्हू आहे जेको टाइम वठण लाइ मुसलसल जेको आहे त दटाए रहियो आहे मां ज़ाहिर थिए पियो त हुनखे पेमेंट ॾियणी ई कोन्हे
1: FIR
0: थी वई त केतिरी हुनखे जेको आहे पनिशमेंट मिली सघे
1: थी हिनखे इस पर सेक्शन बाबति 3 साल लिखियल आहे ऐं फाइन लिखियल आहे ठीकु आहे उहा पनिशमेंट जी एतिरी आहे प्लस में डिपेंड करे थो त केसिस 6 महीननि में बि हली सघनि था साल में बि हली सघनि था इन जो अल्टीमेट जेको कंक्लूजन आहे उहो पनिशमेंट ऐं फाइन ई
0: आहे हलो ठीकु आहे FIR थी वञे थी त इहो सभु बेलेबल आहे जेको एक्यूस पर्सन आहे उहो बेल कराए सघे थो
1: इहो बेलेबल इन सेंस में आहे त अमाउंट ॾिठो वेंदो मिसाल अगरि कंहिं ॿ टे

0: देखो ना फर्दर इंक्वायरी थी, मुझे बेल मिली सके तो
1: ठीक है। चलो FIR थी वही, ठीक है, एक्यूज पर्सन की जेल थी वही, एंड विक्टिम के पैसा केर दो।
0: मां वन सेकंड चवा के क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ है सिर्फ पनिशमेंट है, सजा ही दी दो या फाइन इम्पोज कर दो, पर जेकी अमाउंट आ वो अल्टीमेट जो को रिकवर थी दो वो थी दो सूट फॉर रिकवरी या समरी सूट में। तो घुमी फिरी अगर असा चंग तो असा के अमाउंट मिलनो ही सिविल प्रोसीजर में या सिविल लिटिगेशन से मिलनो, क्रिमिनल में जरा सा पनिश कराए
1: पनिशमेंट मिलती है,
0: पनिशमेंट कराए
1: सही नहीं असा सिविल ते जो को आते पो नेक्स्ट प्रोग्राम में
0: जरूर अगर
1: टाइम सफा मुक्त से
0: इन इंशाल्लाह इंदर टाइम में नते असा जे जो को समरी सूट है असा सिविल से रिलेटेड इन इश्यूज हन असा उन ते डिस्कशन करे वठंदा से।
1: ठीक है, अच्छा इन नट शेल तवा असा ने व्यूअर्स के केड़ी सलाह केड़ी एडवाइस
0: या सलाह दिनम त अगर ता कोई भी चेक इशू कयो ता
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: चल सो भी।

अमेरिका जा ईरान जे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक हमला। ॾखण ऐं विच ईरान वारनि इलाइक़नि में पुलनि, बिजली घरनि, सुरंगनि ऐं सामूंडी पाणी बिठो कंदड़ प्लांट्स खे निशानो बणायो वियो। हमलनि में शहीद थियल चइनि औरतुनि समेत 8 ॼणनि जूं तस्वीरूं बि जारी, केतिरा ई ज़ख़्मी। ईरानी मीडिया मूजिबि अमरीका मेरी टाइम कंट्रोल टावर खे निशानो बणायो। जासिक बेट खे 3000 शहरियुनि खे पाणीअ जी फरहमी मुअतल थी वई। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ऐं रेलवे ट्रेक्स खे बि तबाह कयो वियो। अमरीकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई। अमरीकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। ईरानी फ़ौज जा कुवैत, उर्दन, बहरैन ऐं सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ते जवाबी वार। फासर इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अल ज़रक एयरबेस ते हमिलो करे 2 फायर जेट्स ऐं 3 अमरीकी जंगी जहाज़ तबाह कया आहिनि। हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी बि ज़ख़्मी थिया। बहरैन में अमरीकी ड्रोन जी डिपू खे बैलिस्टिक मिसाइलनि ऐं ड्रोन सां निशानो बणायो वियो। बहरैन जे शेख ईसा एयरबेस ते अमरीकी जंगी जहाज़नि वारे हंध ते बि हमिलो कयो। कुवैत में अल अहमदी बंदरगाह ऐं सऊदी अरब जे शहर अल खरिज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस खे मिसाइलनि सां निशानो बणाए अमरीका खे वॾो नुक़सान पहुचायो वियो आहे। कुवैत बिजली ऐं डीसेलिनेशन प्लांट समेत अहम हंधनि ते ईरानी हमलनि जी तस्दीक करे छॾी।

हाणे जंग सां गॾु गालियुनि वारी पॉलिसी ख़तम थी वई। ईरान अमरीकी हमला जारी रहण जी सूरत में तकरार खे इलाक़ाई जंग में तब्दील करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान जी हुकूमत अमली जवाबी कार्रवाई खे बदल आहे। दुश्मन मिसाइल फायर कंदो आहे त तेहरान जो जवाब हुन खां वधीक ताक़तवर हूंदो आहे। ईरान जो बुनियादी मक़सदु दुश्मन खे सबक सेखारण ऐं जंग जो ख़ात्मो आहे। गॾियल क़ौमनि में ईरान जे नुमाइंदे पारां ईरान जे इंफ्रास्ट्रक्चर ते हमला बंदि करण जो मुतालबो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त आख़िरी साह ताईं वतन जो दिफ़ा कयो वेंदो। अमरीकी हमलनि में शहीद थियल ईरानियुनि जो खून ज़ाया थियण न ॾींदासीं।

0: ईरान ते हमला वधाइण जी तैयारी। अमरीका वधीक रीफ्यूलिंग जहाज इसराइल उमाणे छॾिया। रूसी मीडिया मूजिब अमरीका तरफा ईरान खिलाफ़ जारियत वधाइण जी तैयारी कई पई वञे। ईरान में शहरी ढांचे के निशानो पाइण बाद रीफ्यूलिंग जहाज मोकिलिया विया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ऐं कोइती परडे॒ही वज़ीर शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा विच में फोन ते राब्तो। परडे॒ही तर्जुमान मूजिब ॿिन्ही अॻुवाणनि ख़ते जे ताज़ी सूरतहाल ते वरितई। कोइती परडे॒ही वज़ीर पारां ईरान जे हमलनि ते सख़्त घटती ऐं इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाशनामे ते मुकमल अमल दरामद जी उमीद ज़ाहिर। ख़ते में अमन लाइ पाकिस्तान जी तामीरी ऐं सालिसी वारे किरदार जी सारा। इसहाक़ डार चयो त जंगबंदी जे वाइदनि जी पासदारी ऐं ठिकाण वधाईंदड़ क़दम।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204372 and 0242-460100।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
5: माशाल्लाह फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं जॻहि जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, MADS, MS सिंध, RHMP इस्लामाबाद पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन, माहिर अमराज गुर्दे पत्ते ए मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो। संदन जोड़न गोडन जो सूर, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू, मथे जो सूर अध मथे जो सूर, नज़र जी कमजोरी, कन जो वहण, कन जो सूर घट बुधण में अचण, शुगर ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फॉलिज, खंग, टीबी, मादे जो सूर, मादे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर, हेपाटाइटिस बीसी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सावरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, औरतन में कद जो न वधण, औरतन ए मदन जे मर्दन जे पोशीदा बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। टाइम हर अरबा ए खमीस ते सुबह 10 खां 4 वगे खां ताई, जर्मन हर खमीस खां सुबह 10 खां वठी शाम 5 वगे ताई।
1: दोस्तों के टाइम टेबल बुधाइंदा हलूं तो डॉक्टर साहब, हर अरबा, खमीस, जुमो, छंछर, आचर ए सूमर ते सुबह जो 10 खां शाम 5 वगे ताई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। फ्रॉम माय सेहत जी गाल जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ समाज समातुन ते पहुंचे पियो। असंजे स्टूडियो में मौजूद सिंध जा मशहूर मारूफ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब जैसा असा गाल बोल करियूं था। सब का पहिरियां असा डॉक्टर साहब के खुश आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब जो खास मेहरबानियूं आहिनि, मोहब्बत आहिनि जो पंहिंजो कीमती वक्त कढ़ी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम साईं।
1: डॉक्टर साहब ठीक आहियो?
2: जैसे अल्लाह ताला जा एहसान।
1: अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ू ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा, पर इन खां पहिरियां आऊं दोस्तनि खे नंबर ॿुधाईंदो हलां लाइव कॉल जो 0301-2196-8251 ते तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल बि करे सघो था, कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहब खां मालूमात वठी सघो था, पुछी सघो था। त पहिरियां डॉक्टर साहब सां मुखातिबु थींदा। जी डॉक्टर साहब,
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہریاں سب تعریفوں ان رب پاک جو جو اساں کے جارے تو خارائے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبنی زمینی آسمانی آفتن کا محفوظ رکھے تو۔ اساں پروگرام صحت جی گال اور خبر ہے تا ہر روز ان ٹائم تے نشر تھیندو ہے۔ اڑے طریقے سان اساں جی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک جے کی مہراپور شہر میں موجود ہے، ایڈریس اواں کے نوٹ کرے نالو जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड। टाइमिंग असांजी सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। डेज असांजा जेके ॾींहं आहिनि विहण जा उहे आहिनि हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जंहिंमें 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं। उन खां अलावा अंगारे जो ॾींहुं असांजी मोकल हूंदी आहे। बक़ाया ॿिया ॾींहं असां क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहियूं। सूमर, अरबा, खमीस बि क्लिनिक जा डेज आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि हुन में कोशिशि कंदा आहियूं त जेके बि असांजी जे तव्हां शुरू में असांजो प्रोमो ॿुधंदा आहियो त हुन में जेके बि बीमारियूं आहिनि उन जे मुतालिक़ अवां खे आगाही ॾिनी वेंदी आहे। जंहिंमें बीमारियुनि में असां मादे जी बीमारी बि अवां ताईं डिस्कस कंदा आहियूं। न सिर्फ़ु डिस्कस कंदा आहियूं, जॾहिं उनजा पेशंट असां वटि क्लिनिक ते ईंदा आहिनि त पोइ उन्हनि जी ट्रीटमेंट बि कई वेंदी आहे। अलहमदिल्ला हू काफ़ी सारो हुन में फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं असां वटि के अहिड़ा केसिस वधी वेंदा आहिनि, हर असां वटि तव्हां ॾिसंदो त ॿिए मां टियों शख़्स मादे जी बीमारियुनि में ई मुंतकिल हूंदो आहे ऐं असां वटि ईंदो आहे। ऐं जेको आहे सो उनजी जेकॾहिं असां वटि डाइग्नोस करे ईंदो आहे त असां हुनखे मुख़्तलिफ़ टेस्टूं करे ईंदा आहियूं। जंहिंमें हिकु टेस्ट जॾहिं पेशंट असांखे कुझु निशानियूं ॿुधाईंदो आहे तकलीफ़ जे हिसाब सां, त हिकु टेस्ट एच पैलोरी ज़रूरु कराईंदा आहियूं। एच पैलोरी

0: हिन जेके मरीज़ सिहतयाब थी वञनि था त शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अल्लाह ताला जी हूंदी आहे। त हिकु व्यूज़ उहे ईंदा आहिनि असांजे क्लिनिक ते या वरी असांजे स्टूडियो में डॉक्टर साहिबु वटि अक्सर करे ईंदा आहिनि त उहे पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि त असांजे एफ एम ते हलाइजो, जीअं उहे ॿुधी करे ॿियनि खे बि हिकिड़ो फ़ाइदो पहुची सघे। त हिकु मरीज़ आहे जेको पहिरियां मेडिसिन वठी वियो हो, ट्रीटमेंट कराई हुई डॉक्टर साहिब खां ऐं हू सिहतयाब थी वियो आहे, त उन जा व्यूज़ तव्हां ताईं पहुचायूं था। अचो सभई गॾिजी ॿुधूं था।
1: जलालाणी किथे वेठा आहियो? सूरो खां जलालाणी ॻोठु वेठा आहियो। तव्हांजे नंढे नंढो तव्हांजो छा थिए? हाणे जो आहे, हिनखे छा तकलीफ़ हुई? टंग ख़राब थी वई। केतिरा टाइम थियो आहे? कॾहिं ख़राब थी? कीअं ख़राब थी? ॿ अढाई महीना थी विया। पोइ कंहिंखे ॾेखारियो पहिरियां? लेकिन उन्हनि तव्हांखे चयो त टंग जेको आहे सो सही आहे, ख़राब थी वई आहे? टंग ख़राब थी वई आहे, ऑपरेशन थींदो। लेकिन बाद में तव्हां एफ एम ते ॿुधो ऐं एफ एम ते ॿुधी करे हिन नंढे खे तव्हां वठी आयो। हीअ टंग हुई पुटु? हलो हाणे टंग मथे कयो। हींअर टंग जेकी आहे सो मतिलबु सही आहे? हूअं हेॾी सुजी वई, टंग फाटण जहिड़ी थी वई, सख़्तु थी वियो हो ऐं हली बि न पियो सघे। हाणे बाबा हली ॾेखारो। हाणे सिर्फ़ु थोरो सुबुह मंडकाए थो, बाक़ी हली बि सघे थो, घुमी बि सघे थो, फिरी बि सघे थो। सवा मां 90% जेका ठीकु थी वञे। राति जो नालो छा आहे? महर अली। अच्छा, तव्हांखे तकलीफ़ या हली सघो पिया, सूरु हुयो न, ऐं हाणे हली सघे थो? फ़ाइदो आहे? फ़ाइदो पवे थो हाणे? टंग में फ़ाइदो आहे हलो था। चलो ठीकु आहे, बसि हीउ पुछिणो हो। वॾी महिरबानी।
0: दोस्तों, ही व्यूज़ तव्हां ताईं पहुचायासीं। जेको मरीज़ हो जलाराणी, डॉक्टर साहिबु किथां जो जलाराणी साहिबु? अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि। जीअं डॉक्टर साहिबु, मरीज़ हिकिड़ो आयो ऐं उहो जलालाणी साहिबु ठीकु थी वियो हो, त दोस्तों मूंखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि। जीअं मेरापुर एफ एम 94 जो हीअ आवाज़ तव्हांजे समातुनि ते पहुचे पियो। असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंसूर हुसैन मेमण साहिबु, जेके सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि, मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301-91-8051 कंहिं बि बीमारी बाबति तव्हां मालूमात वठी सघो था। बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर हुसैन मेमण साहिबु, सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचर, सूमरु, अंगारो मोकल हूंदी आहे। डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, बाक़ी हफ़्ते जा 6 ॾींहं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक खुलियलु हूंदी आहे। डॉक्टर साहिबु, तव्हां छा महसूसु कंदा आहियो जॾहिं माण्हू ईंदा आहिनि, हिकु दफ़ो दवा वठी वञनि था, ॿीहर दवा वठी वञनि था, या ॿ दफ़ा, टे दफ़ा, या कॾहिं कॾहिं पहिरें ई हफ़्ते में जॾहिं अचनि था, उहे सिहतयाब थी वञनि था ऐं तव्हांखे ॾेखारींदा आहिनि त साईं असीं बसि चेकअप कराइणा आहियूं, बाक़ी ठीकु थी विया
2: आहियूं? अॼु साईं बिल्कुलु ज़ाहिरी आहे त तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे। ख़ुशी इन जे करे बि थींदी आहे जो हिकिड़ो पेशंट हुयो ऐं हुन जेको आहे सो काफ़ी सारो मेडिकल इलाजु, जंहिंखे माण्हू फास्ट इलाजु चवंदा आहिनि, ऐं लेकिन उहो तव्हां पाण ॾिसंदा आहियो त जॾहिं उहो ट्रीटमेंट करे न, असां त हुनखे आरज़ी इलाजु चवंदा आहियूं, त उहो इलाजु जेको सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु टेम्पररी पेशंट खे रिलीफ ॾींदो आहे, लेकिन मुकमल तरीक़े सां पेशंट जी जान कोन छॾींदो आहे। हिन तरीक़े इलाज में इहो हूंदो आहे त न सिर्फ़ु मुकमल पेशंट सिहतयाब थी वेंदो आहे, पर बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जे, ऐं अहिड़ा सारा जेके मूज़ी मर्ज़ हूंदा आहिनि जेके पेशंट तव्हां ॾिसो था त जीअं नंढड़े मिसाल हुयो त हुनजी टंग सुॼी वई हुई ऐं डॉक्टर हुनखे ऑपरेट जो चयो हो त जंहिंमें टंग बि हुनजी यानी कपजी सघे पई, लेकिन असां वटि आयो ऐं हुनखे ज़ाहिर आहे त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त थोरो टाइम लॻंदो आहे, त हिन मिसाल 2 महीना 3 महीना दवा खाधी त उन खां पोइ, ऐं इहो बि यकीन तव्हां मुंहिंजो त इन्हनि जा जेके बि इन जी अमड़ आई त जॾहिं पहिरें दफ़े सां दवा वरिती त ॿिए दफ़े सां जॾहिं पेशंट आहे त हुनजी टंग अञा थोरी सुजी वही तो अजा परेशान हुई तो अजा हमें

0: पाण झुकासो केतिरे कदु छा पियो अचे त मां 90% ठीकु आहियां। उन जी स्वाइलिंग वग़ैरह जेकी सोज हुई सभु ख़तमु थी वई।
1: जी सर, जी
0: ठीकु आहे न भाउ? वधीक
1: ठीकु
0: FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। जी साईं,
2: जी साईं, बिल्कुलु लदे खे ई ॿुधाईंदासीं के केस में ईअं थींदो आहे ऐं घणी लड़क करण सां बि जेको आहे सो स्वेलिंग वधी वेंदी आहे या पेन वधी वेंदो आहे, इन जे करे लड़काइणु न खपे। ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं अधु खे तकलीफ़ थी त बहितर इहो ई आहे त रूबरू ॾेखारनि, वरना घर में जेकॾहिं तेल सरेह जो गरम करे उन में हेड विझी ऐं उहो सिर्फ़ु उन जी हल्की टकोर कंदा या लॻाईंदा त उन में बि काफ़ी रिलीफ़ मिली वेंदो। पर छा आहे जो जीअं त ऑपरेट केस आहे ऐं जेको आहे सो मेडिसिन्स ते बि हूंदो त बहितर इहो ई आहे त फस्ट ऑफ ऑल पहिरियां उन खे जेको आहे सो फॉलो करे या उन डॉक्टरनि सां टचिंग में अचे त उहो वधीक बहितर आहे, वरना अहिड़े केस में पाण उनखे कुझु बि न करे ऐं रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर आहे। ऐं एहतियात करे जिन शयुनि खां उन्हनि खे झलियो आहे, ज़्यादा हलण खां, ज़्यादा लड़काइण खां या ॿी कंहिं अहिड़े खाधे पीते जे हवाले सां, चांवर वग़ैरह, वॾो गोश्त, खटी शइ इस्तेमालु न आहे करणी।
3: जी डॉक्टर साहबु, वॾी महिरबानी। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजो लाइव कॉल नंबर आहे 0301-2196-851। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे कंहिं बि बीमारी बाबति पुछी सघो था। कराची, इस्लामाबाद ऐं नवाबशाह जो मशहूरु होम्योपैथिक डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, MA/DS/MS सिंध RHMP पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, माहिर अमराज़ गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कन कुनरग जो सूरु, नक कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, चीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस BC, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवणो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं ऐं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पुशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।
0: तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301-2196-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे, 0301-2196-851। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचरु ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ थींदासीं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बुर्दी साहब खे ख़ुशि आमदी चवंदा। बुर्दी साहब, छा पुछंदा भाउ डॉक्टर साहब खां?
1: लूण जेकी आहे उहा पियूं था त पोइ असांजी ब्लड प्रेशर सही थो रहे, जंहिंमहिल नथा पियूं त असांजी ब्लड प्रेशर कम थो रहे।
0: अच्छा, लूण पियो था त पोइ सही थो रहे, नथा पियो पोइ वरी तव्हांजो ब्लड प्रेशर घटि थो थी वञे। टेबलेट वग़ैरह खाईंदा आहियो छा ब्लड प्रेशर जी? घणे टाइम खां वठी आहे
1: सर टेबलेट वग़ैरह इलाही इस्तेमालु कया आहिनि सर, कोई फ़र्क़ु नथो पए।
0: कोई फ़र्क़ु नथो पए पियो, माना BP तव्हांजो लो रहे थो।
1: जी जी,
0: कहिड़ियूं शयूं ज़्यादा इस्तेमालु कयो था खाइण पीअण में?
1: सर इहा दाल जी मुङ।
0: जी
1: सर, सब्ज़ी असां दाल जी मुङ खाऊं था।
0: अच्छा, दाल जी मुङ या मुङनि जी दाल खाईंदा
1: आहियो? मुङनि जी दाल।
0: अच्छा, मुङनि जी दाल खाईंदा आहियो न? मुङनि जी दाल, सब्ज़ी, वॾो गोश्त वग़ैरह बि खाओ था?
1: जी सर।
0: वॾो गोश्त बि खाईंदो
1: आहे न सर?
0: इहो खाईंदो कर न, वॾो गोश्त जंहिंजो ब्लड प्रेशर हाई थियो, हाई हुजे न उहो न खाए, जंहिंजो लो हुजे उनखे खाइणु खपे। हा दा
1: सर, वॾो गोश्त जेको आहे असांजो वरी हेपाटाइटिस जो मसलो
0: आहे। अच्छा, हेपाटाइटिस जो मसलो आहे, माना मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि। ॿुधो FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो।
1: जी जी सर।
0: ओके ओके, जी डॉक्टर।
2: जी सर, बिल्कुलु लो ब्लड प्रेशर जूं वजूहात तमामु घणियूं आहिनि, छाजे करे लो ब्लड प्रेशर थींदो आहे ऐं लो ब्लड प्रेशर थी वञे थो त पोइ हुन में छा तकलीफ़ थींदी आहे। एक्चुअल जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त हुनजा वजूहात तमामु घणियुनि जी आहे, पाण ॿुधायो त मूंखे हेपाटाइटिस आहे, यानी मुख़्तलिफ़ उनखे बीमारियूं, हेपाटाइटिस जे करे ज़ाहिर त ॿियूं बि तकलीफ़ूं थी वेंदियूं आहिनि। रत जी कमी, जिगर जी तकलीफ़,